ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की पंचमी तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हाजिर हैं आपके बीच अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं लीजिए पेश है आज का चिंतन।
3: गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार है मन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार और हृदय का भी अंधकार। सच्चाई जब नहीं दिखाई पड़ती है, विशाल हृदय जब स्वार्थवश संकुचित होकर आत्मा को कैद करता रहता है, तब हम अंधकार में जीते हैं। तभी हम मानव यानी जीवों की सर्वश्रेष्ठ रचना के पद से गिर जाते हैं। इसीलिए तलाश होती है प्रकाश की, रोशनी की। हमारे ऋषियों ने उज्ज्वलता के लिए प्रार्थना की है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ये ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, यही है गुरु। गुरु शिक्षा से हमारे जीवन दीप को प्रज्वलित करता है और हम जगमग कर देते हैं जग को। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। जो भारी है वही झुककर कुछ दे सकता है। भारी बादल जल की अपार राशि से झुका रहता है और जगत पर सृष्टि वर्षा की बूंदों से नृत्य कर उठती है। गुरु यानी शिक्षक को भी अपने ज्ञान से भारी होना होता है, तभी वो उढ़ेल सकता है ज्ञान रोशनी की शुभ्र धारा को। हल्का बादल गर्जन तर्जन करता हुआ व्यर्थ उड़ जाता है। वैसे ही बिना ज्ञान के गुरु गुरु हो ही नहीं पाते। हम वस्तुतः होते क्या हैं, कैसे हैं, क्या होना है हमें, ये हम गुरु के ज्ञान रूपी दर्पण और निर्देशन में ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। गुरु ही हमें जड़ चेतन, शुद्धता विशालता, अंधकार प्रकाश, क्षणभंगुरता अनश्वरता के दर्शन कराता है, हमारे विवेक को जागृत करता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, हम समझने लायक होते हैं। बड़ी उहापोह में था अक्खड़ साधु कबीर। उसकी कल्पना उसी को डगमगा रही थी। क्या करे कबीर जब गुरु गोविंद दो उखड़े, काको लागू पाए। पर तभी कबीर के गुरु द्वारा प्रकाशित हृदय में उत्तर कौंध गया। अरे कबीर अल्हड़, तू भगवान को क्या जानने लगा? भगवान की महत्ता, शक्ति, भगवान का अस्तित्व, किसी चीज का पता तुझे कहां था पगले? गुरु ने ही तो तुम्हें भगवान के बारे में बताया। और तब कबीर की वाणी निस्सृत हुई, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु तो ईश्वर से पहले पूजे जाने का अधिकार रखते हैं। गुरु के लिए भी जरूरत बहुत से चीजों की है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था, लंका में बैठा सावधान शिक्षक अपने आचरण से शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। सही शिक्षकों को सावधान होना होगा, ज्ञान प्राप्ति को देने की उदात्त भावना को जगाए रखना होगा। सबसे बड़ा महत्व है गुरु के जीवन और आचरण का। गुरु को अपना आचरण शिक्षा के अनुरूप ढालना होगा, तभी शिक्षा की सार्थकता होगी।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए पेश है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का श्रावणी मास के आज के सुबह, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं भगवान शिव के गुणगान और उनके कुछ ऐसे भजन जो आपके दिल तक पहुंचेंगे।

सभी के दिल को समझने वाले भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। त्रिलोकी तीनों जग के स्वामी हैं, पशुओं के दया करता हैं और सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, खासकर श्रावण मास में। ऐसे में आइए सुनते हैं उस शिव की भजन जिनके गले में नाग विराजमान है और जिनके माथे पर चंद्र और गंगा सुशोभित है।

सत्यम शिवम सुंदरम। शिव के नाम से ये जगत है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सब पर दया और करुणा करने वाले हैं। सबको मोह माया से मुक्त करने वाले भी शिव हैं। आइए ऐसे भोलेनाथ की हम आज वंदना करें।

सभी को मोह माया से मुक्त करने वाले भगवान शंभु, भगवान शिव जो है सबके लिए प्रिय है, सबके दिल में बसते हैं। आइए ऐसे भोलेनाथ की हम जयकारा लगाएं और उनकी आरती उतारें।

शंकर मेरा प्यारा, आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गीत। दोस्तों, आज श्रावण मास की तीसरी सोमवारी है और इस सोमवारी पर हमने आपकी प्रार्थना की है शिव भजन के साथ, शिव गुणगान के साथ, उनकी महिमा की मंडमान के साथ। आइए कार्यक्रम के अंत में एक बार फिर जयकारा लगाए वही शंभु की।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए पेश है रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे इसका भाग संख्या 64, एपिसोड नंबर 6464।
1: एपिसोड 64, 64।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

श्रोता आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज आपने सुना इसका एपिसोड नंबर 64। हम बोल रहे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। चलिए श्रोता अब हम आपको रूबरू कराते अपने केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों से।

श्रोताओ, आपसे कुछ ही पल बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और लोकगीतों का आनंद उठाएंगे प्रातः 7 बजे कार्यक्रम लोकरंग में।

दोस्तों, आज सोमवार है। आज सुनेंगे विविधा के अंतर्गत वार्ता, हिंदी के वैश्विक प्रसार में जनसंचार और कंप्यूटर। वार्ताकार होंगी तुलसी कुमारी।

दोस्तों बता दें कि आज सुबह 7:30 से आप लुत्फ उठाएंगे गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का, जिसका नाम होगा गीत संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रातः 8:00। 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

मॉर्निंग माला जी, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 8:45 पर। 9 बजे से श्रोताओं आप लगातार सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम पूरे एक घंटे, और 10 बजे होगा आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग। पुनः सुबह 11 बजे से लगातार आप सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

दोस्तों बताते चले कि हमारी संध्याकालीन सभा में आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी 5 बजे से 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती बारी और 6 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी की रांची के। इसके अलावा श्रोताओं से 6 बजे आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना, फिल्म संगीत का लुत्फ उठाएंगे। संध्या 6:30 पर आपकी योजना ये खास कार्यक्रम होगा। संध्या 7:15 पर ऑल टाइम हिट्स इसका आनंद उठा सकते हैं। संध्या 7:35 पर रजनीकंधा ये कार्यक्रम लेकर आएंगे हमारे खास अंदाज में हमारे आज के होस्ट। रात्रि 10 बजे 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से और हमारी आज की सभा संपन्न होगी हर दिन की तरह रात्रि 11:10 पर। तो ये थी श्रोता हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त झलक।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:54 हुए हैं। श्रोता अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: स्वागत है श्रोता आप सभी का लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग में। आइए भगवान शिव की इस भजन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के लोक रंग की।
1: देवों में महादेव की
2: जय हो।
1: देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
2: जय हो जय हो जय हो।
1: सुनिए जराए ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जराए ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा सुना रहा हूँ मैं एक भक्त और

0: शारदा सिन्हा के स्वर में आपने सुना ये भोजपुरी लोकगीत। श्रोता, ऐसे और भी गीत लोक रंग में सजेंगे हमारे इस एफएम पर, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: लोक रंग, श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

श्रोताओ, लोक रंग में इस वक्त आप सुन रहे हैं संत मीराबाई द्वारा रचित एक प्रसिद्ध मीरा भजन, बरसे बदरिया सावन की। इस जाने माने गीत को बहुत सारे कलाकारों ने अलग अलग आवाज में गाई है। देवकी पंडित ने गाया, संजीवनी भेलाणी ने गाया और राजलक्ष्मी संजय ने भी अपनी आवाज दी। आइए लुत्फ उठाते जाए अपने गायकी में इस प्रसिद्ध गीत का।

दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा रियासी में, हमारे चारों तरफ खेतों में रोपारोपी के गीत चल रहे हैं क्योंकि खेतों में रोपाई चल रही है। ऐसे में आइए आपको सुनवाते हैं लोक रंग में अपना ये अनोखा लोकगीत का रंग रोपा गीत।

पानी में डूबे खेत और खेतों में महिलाओं की एक लड़िया होती है। ढेर सारी महिलाएं अपने घुटने तक अपने साड़ी को उठाकर दोनों हाथों से रोपा करती रहती हैं और सांग मिलके गाती है ऐसी रोपा गीत।

शारदा सिन्हा की आवाज में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत भोजपुरी लोकगीत और श्रोता इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब यही समाप्त होता है।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है हिंदी के वैश्विक प्रसार में जनसंचार और कंप्यूटर। इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही है वार्ताकार तुलसी कुमारी।
1: कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले वर्षों में विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। आज कोई भी भाषा कंप्यूटर से दूर रहकर लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती। कंप्यूटर के विकास के आरंभिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कंप्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण सामान्य लोगों में यह गलत धारणा फैल गई कि कंप्यूटर अंग्रेजी के सिवा किसी दूसरी भाषा में काम ही नहीं कर सकता। किंतु यूनिकोड के पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल गई। 19 अगस्त 2009 में गूगल ने कहा कि हर 5 वर्षों में हिंदी की सामग्री में 94% बढ़ोतरी हो रही है। हिंदी की इंटरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिंदी को प्राथमिक भारतीय भाषा के रूप में पहचानते हैं। इसके साथ ही अब अन्य भाषा के चित्र में लिखे शब्दों का भी अनुवाद हिंदी में किया जा सकता है। फरवरी 2018 में एक सर्वेक्षण के हवाले से खबर आई कि इंटरनेट की दुनिया में हिंदी ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अंग्रेजी को पछाड़ दिया है। यूथ फॉर वर्क की इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस आशा को सही साबित किया है कि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार छोटी शहरों की ओर बढ़ेगा, हिंदी और भारतीय भाषाओं की दुनिया का विस्तार होता जाएगा। इस समय हिंदी में सजाल, चिट्ठे, विपत्र, गपशप, खोज, सरल मोबाइल संदेश तथा अन्य हिंदी सामग्री उपलब्ध है। इस समय अंतरजाल पर हिंदी में संगठन के संसाधनों की भी भरमार है और नित नए कंप्यूटिंग उपकरण आते जा रहे हैं। लोगों में इनके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, ताकि अधिकाधिक लोग कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करते हुए अपना, हिंदी और पूरे हिंदी समाज का विकास करें। शब्द नगरी जैसी नई सेवाओं का प्रयोग करके लोग अच्छे हिंदी साहित्य का लाभ अब इंटरनेट पर भी उठा सकते हैं। हिंदी और जनसंचार। हिंदी सिनेमा का उल्लेख किए बिना हिंदी का कोई भी लेख अधूरा होगा। मुंबई में स्थित बॉलीवुड हिंदी फिल्म उद्योग पर भारत के करोड़ों लोगों की धड़कनें टिकी रहती हैं। हर चलचित्र में कई गाने होते हैं। हिंदी और उर्दू के साथ साथ अवधी, बम्बैया हिंदी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बोलियां भी संवाद और गानों में उपयुक्त होती हैं। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। अधिकतर गाने उर्दू शायरी पर

0: आधारित होते हैं। कुछ लोकप्रिय चलचित्र हैं महल 1949, श्री 420 1955, मदर इंडिया 1957, मुगले आजम 1960, गाइड 1965, पाकीज़ा 1972, बॉबी 1973, जंजीर 1973, यादों की बारात 1973, दीवार 1975, शोले 1975, मिस्टर इंडिया 1987, कयामत से कयामत तक 1988, मैंने प्यार किया 1989, जो जीता वही सिकंदर 1991, हम आपके है कौन 1994, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, ताल 1999, कहो ना प्यार है 2000, लगान 2001, दिल चाहता है 2001, कभी खुशी कभी गम 2001, देवदास 2002, साथिया 2002, मुन्ना भाई MBBS 2003, कल होना हो 2003, धूम 2004, वीर ज़ारा 2004, स्वदेश 2004, सलाम नमस्ते 2005, रंग दे बसंती 2006 इत्यादि। अब मोबाइल कंपनियां ऐसे हैंडसेट बना रही है जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी जानने वाले कर्मचारियों को वरीयता दे रही है। हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही है और हिंदी फिल्में देश के बाहर देश से अधिक कमाई कर रही हैं। हिंदी विज्ञापन उद्योग की पसंदीदा भाषा बनती जा रही है। गूगल ट्रांसलेशन ट्रांसलिटरेशन फोनेटिक टूल्स गूगल असिस्टेंट आदि के क्षेत्र में नई नई रिसर्च कर अपनी सेवाओं को बेहतर कर रहा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटलीकरण जारी है। फेसबुक और व्हाट्सएप हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सोशल मीडिया ने हिंदी में लेखन और पत्रकारिता के नए युग का सूत्रपात किया है और कई जन आंदोलनों को जन्म देने और चुनाव जिताने हराने में उल्लेखनीय और हैरान करने वाली भूमिका निभाई है। सितंबर 2018 में प्रकाशित हुई एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी में ट्वीट करना अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष सबसे अधिक पुनः ट्वीट किए गए 15 संदेशों में से 11 हिंदी के थे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का बाजार इतना बड़ा है कि अनेक कंपनियां अपने उत्पाद और वेबसाइटें हिंदी और स्थानीय भाषाओं में ला रही है। हिंदी का वैश्विक प्रसार सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते थे उनमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया जाता था। सन 1997 में सेंसस ऑफ इंडिया का भारतीय भाषाओं के विश्लेषण का ग्रंथ प्रकाशित होने तथा संसार की भाषाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा सन 1998 में भेजी गई यूनेस्को प्रश्नावली के आधार पर उन्हें भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर महावीर सरन जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद अब विश्व स्तर पर यह स्वीकृत है कि मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। चीनी भाषा के बोलने वालों की संख्या हिंदी भाषा से अधिक है, किंतु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा सीमित है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिंदी की अपेक्षा अधिक है, किंतु मातृभाषियों की संख्या अंग्रेजी भाषा से अधिक है। विश्व भाषा बनने के सभी गुण हिंदी में विद्यमान है। 20वीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिंदी का अंतरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत में
1: धीरे धीरे अपना स्वरूप बिंबित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेजी से बढ़ी है वैसे किसी और भाषा में नहीं। विश्व में लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे छोटे केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। यूएई के हम एफएम सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डाइचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिसंबर 2016 में विश्व आर्थिक मंच ने 10 सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं की जो सूची जारी की है उसमें हिंदी भी एक है। इसी प्रकार कोर लैंग्वेजेस नामक साइट ने 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। के इंटरनेशनल ने वर्ष 2017 के लिए सीखने योग्य सर्वाधिक उपयुक्त 9 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन को संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार प्रयत्नशील है। अगस्त 2018 से संयुक्त राष्ट्र ने साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन आरंभ किया है।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत वार्ता हिंदी में। वैश्विक प्रचार में जनसंचार और कंप्यूटर कितना सहायक है। वार्ताकार थी तुलसी कुमारी और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

मुस्कुराने लगा है ये दिल, धड़कने लगा है दिल। अलीशा चिना की आवाज में आपने सुना ये गीत। और दोस्तों अब आइए सुनते हैं दिल की एक और आवाज, कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचें।

गीत संगीत की ये महफिल सजी है दोस्तों FM 92.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। चम चम चम चम हाय।

में आपने सुना अर्थ फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जिसे आए दिन हम अपनी जिंदगी में गाते हैं, गुनगुनाते हैं और एक दूसरे तक, एक दूसरे के दिल की बात पहुंचाते हैं। लीजिए आपका एक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: です。
1: सावन के सुहाने मौसम में एक नार मिली बादल जैसी। आपने सुना पंकज उदास की गाई ये गीत और श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत यहीं समाप्त होता है। गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत का लुत्फ उठाया आपने आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम में 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:57 और 15 सेकंड हो चुके हैं। श्रोताओं, थोड़ी देर में 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर होगा मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8:30 पर श्रोताओं आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। कृपया इन सभी के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण पहली सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। पहली अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
5: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
6: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
7: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
4: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289-0940-44 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
8: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
4: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
9: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
4: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
10: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई, नीट, सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA to reconduct UGC NET exams for three subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. Self-enumeration for Census 2027 will begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir and continue till August 31st. Our correspondent has filed this report.
13: Ladakh would become the first union territory in the country to complete the Census 2027 exercise with population enumeration scheduled from September 1st to 30. The self-enumeration beginning today. Around 637 enumeration blocks would be created for complete coverage of Ladakh. Chief Principal Census Officer and Director Census Operation for Jammu and Kashmir and Ladakh, Amit Sharma, during a press conference said the September schedule has been planned in view of the region's harsh winter condition, difficult terrain and limited accessibility of Ladakh. Population enumeration will collect detailed information on population distribution, demographic composition, education, economic activity, migration, disability, language, fertility and other population characteristics. Census 2007 is being conducted digitally with housing listing operation completed from June 1st to 30. The first phase achieved 100% digital data collection. Yangchan Dolma for Akashwani from Lelata.
12: The National Testing Agency NTA announced retests for three papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. NTA said the English paper will be held on 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The Sociology paper will be held on 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for assistant professor and admission to PhD programs. NTA had formed a committee to inquire into and look into these errors. The committee recommended that in the interest of holding a fair and error-free examination, these three papers should be reconducted. JPSC JSSC aspirants agitation in Jharkhand has entered its 24th day with students intensifying the protest over alleged irregularities in recruitment examinations. A fresh round of talks between the government and student representatives is scheduled for today. Here is a report.
14: JPSC JSSC aspirants took out a protest march from Jaipal Singh Munda Stadium to Albert Ekka Chowk in Ranchi yesterday and burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav. The students raised slogans demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into alleged irregularities in recruitment examinations. Meanwhile, the state government has invited the protesting students for talks today at 2 p.m. in Ranchi with the students allowed to participate along with their legal advisors. The Reform Manch has said that if the government accepts the students' demands, steps could be taken towards ending the agitation, otherwise the protest will continue. The students have already announced a protest outside the Chief Minister's residence on August 20th, but said the final decision would depend on Devendranath Mehto's health and outcome of today's talks. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
12: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will today launch the Electoral Literacy Club ELC 2.0 in Patna. This initiative has been seen as an important step towards giving a fresh impetus to electoral literacy, digital engagement and meaningful participation of citizens in democracy. We have a report.
3: ELC 2.0 is being launched keeping in the view of growing digital connect of the youth. The Election Commission had started the Electoral Literacy Club in the year 2018 with the aim of familiarizing young citizens with the electoral process. Under ELC 2.0, the target has been set to form ELCs in 15 lakh schools, 70,000 colleges and 1420 universities across the country over the next 6 months. All these ELCs will also be linked to the Election Commission of India's network, ECI Net. Meanwhile, in another program, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will interact with around 500 booth-level officers at Nalanda University in Rajgir today. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
12: Air India has announced that all its flights to and from Vishakhapatnam will operate from the new Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogpuram from today, using the existing airport code VTZ. Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogpuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. It has 22 check-in counters, 18 self-baggage drop units, advanced screening systems, modern baggage handling facilities, and 7 aero bridges for a seamless passenger experience. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Government says 396 infrastructure projects of different ministries with an estimated cost of about 18.66 lakh crore rupees have been recommended for approval under the PM Gati Shakti initiative till date. The Minister of Commerce and Industry said that among these projects, 256 projects have been sanctioned and out of which 198 projects are under implementation. It added these projects have been evaluated through the Network Planning Group NPG mechanism. PM Gati Shakti National Master Plan PMGS NMP is a whole of government approach to bring together various central ministries and departments and states and UTs to ensure integrated planning and coordinated execution of infrastructure projects. India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy rainfall to extremely heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for today. An orange alert for very heavy rainfall has been issued for Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day. Heavy rainfall is also expected over Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Marathwada and parts of Northeast India. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Bihar, Jharkhand, Karnataka and Odisha today. Similar weather conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana and Andaman and Nicobar Islands for the day. Furthermore, the weather agency has forecast one or two spells of very light rainfall during afternoon in Delhi. Odisha braces for the spell of intense rainfall as a low pressure area over the Bay of Bengal is likely to intensify into a depression today, threatening to worsen the flood situation in northern districts. The IMD has issued a red warning for 4 districts and an orange warning to 11 districts with heavy to extremely heavy rainfall likely at several places in North Odisha. With rivers in spate and lakes affected, the state government has intensified relief operations while Chief Minister Mohan Charan Majhi will undertake an aerial survey of flood-hit Bhadrak and Jajpur districts today. We have more from a correspondent.
15: In the flood hit areas, the situation remains challenging as inundation has affected large parts of several northern Odisha districts. The state government has cancelled the leave of officers in affected districts and deployed 3 IAS officers to coordinate relief and restoration work in Bhadrak, Baleswar and Jajpur. Schools and educational institutions are closed today in Mayurbhanj, Keunjhar, Bhadrak, Jajpur and Baleswar as a precautionary measure. Fishermen have been advised to stay away from the sea till tomorrow. In Jaleshwar, Baleswar district, 2 persons lost their lives and another seriously injured after a wall collapsed due to incessant rain. Authorities are closely monitoring vulnerable areas and river systems as fresh rainfall could further aggravate waterlogging and inundation. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
12: The 12-day-long annual pilgrimage to the ancient Baba Burha Amarnath Temple in Poonch district of Jammu began this morning amid tight security. The yatra will continue until August 28 and will culminate on Raksha Bandhan. Baba Burha Amarnath Temple dedicated to Lord Shiv is located in Rajpura village in Mandi Tehsil of Poonch district. We have more from a correspondent.
16: Lieutenant Governor Manoj Sinha today flagged off the first batch of the Yatris from the Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu toward the border district of Poonch in the morning under tight security arrangements. District administration and local bodies have finalized arrangements including waterproof tents, community kitchen, langar locations, parking layouts and healthcare station along the pilgrimage route. Langars and reception counters have been set up at vital transit locations like Sundarbani, Nushara and Rajal in Rajouri district. The Poonch district administration has launched a dedicated portal to facilitate advance registration for the pilgrims coming from across the country. This is N. Gulshan Rana for Akashwani News from Jammu.
12: The country's first virtual zoo has been started in Indore, Madhya Pradesh. We have more from a correspondent.
7: The 14D cinema and virtual jungle safari have been developed under the PPP model at a cost of around 4.5 crore rupees. In the virtual jungle safari, people can experience forests and wildlife through technology. The 14D cinema will offer visitors a different movie watching experience. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated these facilities yesterday and also watched a film with school children in the 14D cinema. These new facilities will help children and tourists learn about wildlife and nature through technology. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
12: The BWF Badminton World Championships will begin today at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. We have a report.
17: Indian shuttlers will begin their campaign on the opening day today. In the women's singles, former world champion and ninth seed PV Sindhu will be up against Sophia Noble of Ireland, while the women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Paula Lopez and Lucia Rodriguez of Spain in the first round. In the evening, Indian debutant Ayush Shetty will face world number one and defending champion Shi Yu Qi of China in the men's singles category. In the men's doubles discipline, the ace Indian duo and fifth seeds Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have already proceeded to the second round after receiving a bye. Meanwhile, the Indian duo of M.R. Arjun and Hariharan Amsakarunan will take on the Irish duo of Scott Gildy and Paul Reynolds. In the mixed doubles category, 15th seed pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto have also proceeded to the round of 32 after a bye. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
12: In men's cricket, India will resume the first innings at the overnight score of 460-9 on day 3 of the first test match of the series, the Gull International Stadium in Sri Lanka today. Prasid Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw of stumps yesterday evening. Devdutt Padikkal hit his maiden test century, scoring 167 runs. KL Rahul scored 82 runs and Dhruv Jurel contributed 51 runs. For Sri Lanka, Prabhat Jayasurya clinched 4 wickets, while Keshara Nuwantha took 3 wickets. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
18: Thank you, Abhishek. Amit Shah seeks Congress apology over Vande Mataram Rao, reports The Hindu. West Bengal launches Ayushman Bharat, CM health insurance schemes, says The Statesman. Hindustan Times in its editorial piece, A Roadmap for Progress, writes that the successes of the PM Sapsadhara focus is critical to resolving the immediate crisis of jobs. The paper elaborates that like every such address from the ramparts of the Red Fort over the past 8 decades, Prime Minister Narendra Modi's speech to mark the 80th Independence Day combined a short-term actionable roadmap with the long-term path that the country should embark on. And finally, in a world record and Guinness feat, the Asian Age writes that 3 UAE-based Indians were among 65 skydivers who jumped from an aircraft at an altitude of 13,000 feet, each carrying their respective national flag, making it to the Guinness World Records. And with that, it's back to you, Abhishek.
12: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal. Annual pilgrimage to Himalayan Shrine of Burha Amarnath begins in Jammu and Kashmir. And BWF Badminton World Championships to begin today in New Delhi. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
19: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
20: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
21: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
22: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
21: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
23: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। सरकार ने आज चौथी बार वार्ता के लिए किया आमंत्रित। केंद्र सरकार ने झारखंड में आयुष चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 148 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के तहत सुनवाई और नोटिस मिलने पर नहीं घबराने की अपील की। 24 अगस्त से नो मैपिंग और विसंगति वाले मामलों की होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य में मॉनसून के सक्रिय रहने का जताया अनुमान। आज रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास से जिलों में भारी बारिश के संकेत। रांची में खेले गए 135वें डूरंड फुटबॉल कप प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एससी दिल्ली ने एफसी रेंगदाई को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 24वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया है और विद्यार्थियों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इधर कल शाम रांची, गिरिडीह और सरायकेला समेत विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार से परीक्षा घोटाला मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कहा गया कि 18 अगस्त तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया जाएगा।
2: झारखंड सरकार के विरोध में ये आंदोलन कल है और उनको खुला चेतावनी है। आगे जो मांग है जेपीएससी और जेसीसी पे, अगर जो हमारा मांग उसको पूरा नहीं करता है, 18 तारीख हमारा लास्ट डेट है। अगर 18 तारीख नहीं होता है तो 20 तारीख को उग्र आंदोलन के लिए तैयार है और ये उग्र आंदोलन बहुत जल्दी जन आंदोलन में बदल जाएगा अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करता है।
0: केंद्र सरकार ने झारखंड में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना में केंद्र 96 करोड़ रुपए देगा जबकि राज्य की ओर से 52 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार इस राशि का इस्तेमाल आयुष से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। एसआईआर के तहत नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पात्र नागरिकों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करना और दावा आपत्तियों का निस्तारण मतदाता सूची को शुद्ध, अपडेट और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से नो मैपिंग, विसंगति और अन्य श्रेणियों से जुड़े मतदाताओं के मामलों की सुनवाई शुरू होगी। प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी आज रांची में झारखंड थिंक फ्यूचर कॉन्क्लेव आयोजित करेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और विशिष्ट अतिथि अभिनेत्री अधिवक्ता कोनिका सदानंद होंगी। आयोजकों ने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर झारखंड के विकास और भविष्य के लिए नए विचार और रणनीति पर विचार विमर्श करना है। लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्य के मंत्रीगण, सांसद, पूर्व सांसद, मेयर, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद जिले के छाताबाद में हुई भूधसान की घटना के बाद मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर पीड़ित परिवारों का धरना जारी है। इसी कड़ी में डुमरे विधायक जयराम महतो ने कल पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विधायक जयराम महतो ने बताया कि 15 सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
3: लगातार ये घटनाएं घट रही, भूधसान की, मकानों के जमीन दोज होने की, इंसानों के जमीन दोज होने की, जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करना चाहिए और जितनी भी कार्रवाई है उन्हें तुरंत संपादित करना चाहिए कि भाई इनको पुनर्स्थापित किया जाए, इनको नया आवास यहाँ पर दिया जाए और साथ ही जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो आधुनिक बाजार दर के अनुसार जो मुआवजा होता है उस मुआवजा को तय करना चाहिए। जिनको क्षति हुआ है, जो घायल हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, उनको कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए।
0: सावन की तीसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ी है। तीसरी सोमवारी को इस बार नागपंचमी का संयोग भी बन रहा है जिससे शिव भक्तों में विशेष उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देवघर में आज करीब 4 लाख कांवरिया जलाभिषेक करेंगे।
4: सावन की तीसरी सोमवारी में बाबा नगरी में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात से ही लंबी कतार में लगी है। दंडाधिकारी से लेकर पुलिस जवान तक रूट लाइन, ट्रैफिक व्यवस्था सहित कई तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को देने में लगे हैं। देर रात तक ही करीब 15 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लाइन लग गई थी। अहले सुबह पट खुलते ही श्रद्धालुओं को सुगम जलाभिषेक कराया जा रहा है। हर हर महादेव बोलबम के नारों के साथ पूरा देवघर गुंजयमान है, केसरिया रंग से पटा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: और अब मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का असर झारखंड में अगले 48 घंटों तक बना रहेगा। मौसम केंद्र रांची ने आज रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा के कुछ हिस्सों में भी

भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल पलामू, लातेहार और चतरा के आसपास भारी बारिश की संभावना है। राजधानी रांची के बरसामुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए 135वें डूरंड कप के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल एससी दिल्ली ने एफसी रंगदाई को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। एससी दिल्ली अब 19 अगस्त को कोलकाता में सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विजेता से भिड़ेगी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल का मैच देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने छात्र आंदोलन और जेपीएससी परीक्षा मामले में हो रही सीआईडी जांच में खुलासे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है ओएमआर शीट हेराफेरी में ख्यांगते भी शामिल। प्रभात खबर ने छात्र आंदोलन पर लिखा है मंत्रियों की कमेटी ने छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया, राहुल गांधी ने सीएम को भेजा पत्र। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है छात्रों की मेहनत भ्रष्टतंत्र के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, परीक्षा व्यवस्था बदलेगी। दैनिक जागरण ने एसआईआर के तहत नोटिस मिलने पर नहीं घबराने की चुनाव आयोग की अपील को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। सरकार ने आज चौथी बार वार्ता के लिए किया आमंत्रित। केंद्र सरकार ने झारखंड में आयुष चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 148 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के तहत सुनवाई और नोटिस मिलने पर नहीं घबराने की अपील की। 24 अगस्त से नो मैपिंग और विसंगति वाले मामलों की होगी सुनवाई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य में मॉनसून के सक्रिय रहने का जताया अनुमान। आज रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश के संकेत। रांची में खेले गए 135वें डूरंड कप प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एससी दिल्ली ने एफसी रंगदाई को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

सच बाणी दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। आइए आपकी मॉर्निंग करते हैं मलठी ऐसे ही गीतों के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना दोस्तों आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। ऐसे ही और भी होंगे आपके मॉर्निंग में आज मेलोडीज की लहरियां, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आशा फिल्म का ये गाना श्रोता आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत का संगीत निर्देशन। अब आइए सुनते हैं एक और गीत जिसे बड़ी ही खूबसूरती से हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से।

शैलेंद्र सिंह और कंचन की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म रफू चक्कर से। और इसी के साथ साथियों कार्यक्रम मॉर्निंग बैलेंस यही समाप्त होता है।

वाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं श्रोता, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब वक्त है एक और छोटे से अंतराल का।

0: बॉर्डर ट्रू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजें थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा ने धुन बनाई थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
5: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
4: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

आशिक कई टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें तुलसी कुमार और केके की थी, इरशाद कामिल के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: सावन की हवा में घुली है मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली का प्यार प्यार और नोक झोंक। पहरा लाभ गीत सुन रहे थे, मुबारका फिल्म से मीका सिंह की आवाज थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था।
1: कितने
0: फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। बार बार देखो फिल्म का ये गीत अमर आरशी बादशाह नेहा कक्कड़ की आवाजों में। अमरीक सिंह और कुमार के बोल हैं।

बार बार देखो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो

0: ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरदिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

0: बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा सवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा, और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स, जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सिलेक्ट किया, और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी, वो थी मंझली दीदी, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया।
1: 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था हा माझा मार्ग एकला, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली दीदी, ज्वेल थीफ, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी, मीला और कृष्णलीला।

0: बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले सचिन के जिगरी दोस्त थे जूनियर महमूद। दोनों ने मिलकर 15 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें से उल्लेखनीय फिल्में थीं ब्रह्मचारी, नायक थे शम्मी कपूर,
1: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी।

बिरला ही होगा जिसने 1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे, वो एक युवा कलाकार बन चुके थे। उसी वर्ष बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई।

0: गीत गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए। अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका वधू। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

1978 में सचिन की 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में वे नायक थे और 1 फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडले सुनते हैं।

0: kapuchi dum dum.
1: फिल्म त्रिशूल से सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्में थी अवतार, सुरसंगम और सत्य पे सत्ता। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े। पारध, इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू। 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। नायक थे सचिन। लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे। उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्म

1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में। फिल्म थी नवरी मिले नवर्याला। नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया। उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी। और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठाया।

इस गीत के नायक की गाड़ी चाहे जिस दिशा में गई हो, सचिन के कला जीवन की गाड़ी जा रही है सफलता की ओर। और इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं अभिनय, निर्देशन, पार्श्व गायन, टीवी पर रियलिटी शो में सहभागिता और जीत, टीवी पर नृत्य के रियलिटी शो का निर्माण, फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों का निर्माण, और ये यात्रा बदस्तूर जारी है। सचिन जी की पत्नी सुप्रिया तो उनके साथ नायिका के रूप में कई फिल्मों में आई, परंतु अपने बेटी को लेकर भी, यानी श्रिया पिलगांवकर को लेकर भी सचिन जी ने 2013 में फिल्म बनाई एकुलती एक। सन 2015 में रिलीज हुई मराठी फिल्म कट्यार कारजात घुसली, मराठी के मशहूर साहित्यकार पुरुषोत्तम दार्भेकर लिखित संगीत कट्यार कारजात घुसली, इस नाटक पर आधारित इस फिल्म में खां साहेब की भूमिका में सचिन ने जान डाल दी। इस अभिनय के लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और उनके इस परफॉर्मेंस के लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है, लाजवाब।

0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सचिन पर केंद्रित आज के फनकार, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

FM 102.1 मेगा हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

हेलो हजारीबाग, मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव और एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लेकर हाजिर हूँ आपके उसी खूबसूरत कार्यक्रम को जो चलता हुआ सफर है, सुहाना सफर आपकी और हमारी बातों का, जज्बातों का, एहसासों का और उस कारवां का जहाँ कुछ बातें होती है, जानकारियों की कुछ बातें होती है, अपनी सेहत की कुछ बातें, मौसम की कुछ बातें, दिल की और कुछ बातें अपनी जिंदगी की। तो दोस्तों, वंदना श्रीवास्तव के साथ पूरे एक घंटे आप रहेंगे और कहेंगे एक साथ मिलकर हेलो हजारीबाग।

दोस्तों आज की सुबह बहुत ही खिली खिली है क्योंकि सूरज की किरणों से नहाई आज की सुबह दुल्हन सी सच कर आई है, जिसके आंचल हरियाली से भरे हैं, मन हवाओं की तरह चंचल है, तन खुशबू लिए इतरा रही है और अपनी निगाहों से दे रही है सदा ढेर सारे प्यार और खुशियों की। ऐसे में दिल कह रहा है दोस्तों कि इश्क में कभी इजाजत नहीं ली जाती, दिलों पे कब्जे तो अक्सर निगाहों से होती है। तो चलिए आपके दिलों पर कब्जे करने के लिए हम आपके लिए रखकर आए हैं कार्यक्रम का ये पहला तोहफा।

कहिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा हेलो हजारीबाग का ये पहला नजराना। उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग के सभी दोस्तों का दिल गुड़ी गुड़ी हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम अपने कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर।

दोस्तों, ऐसा मौसम शायद ही कभी जिंदगी में आता है कि बरसात के दिन में खिले खिले सूरज दिखाई पड़ते हैं और झिलमिलाती सूरज की किरणों के साथ सुबह का आगाज होता है। ये मौसम है सावन का। ऐसे में आज का दिन हमारे हजारीबाग के लिए कैसा रहेगा, चलिए एक नजर इस पर डालते हैं। मौसम विभाग की माने तो आज हमारे शहर हजारीबाग का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 28 डिग्री सेल्सियस। धूप खिली रहेगी, लेकिन शाम होते होते थोड़ी सी बारिश की हल्की हल्की बूंदें आप तक पहुंच सकती है। ऐसे में दोस्तों, दिल कहता है कि तेरे आने से न जाने क्यों बेमौसम बरसात हो जाती है। तेरे आने से न जाने क्यों बेमौसम बरसात हो जाती है। तेरे आने से न जाने क्यों बरसात बहकने सी लगती है। न जाने कैसे उसे तेरे आने की महक लग जाती है। ये मौसम है सावन का। सावन के आने से बादल ऐसे उमड़ते घुमड़ते हैं जैसे तू मेरे आसपास।

दस तो पुराने लोगों का दिल अगर इस गीत के साथ धड़क रहा है तो इस सावन के मौसम में हमारे युवाओं का दिल कुछ इस तरह से धड़क रहा है।

हेलो हजारीबाग, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। जी हाँ दोस्तों, इस पल बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए और खो जाइए हमारे इस कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में, जो आपको दे रहा है जीवन की एक नई सदा। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खास सेगमेंट की ओर।

दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ विचार ना हो तो जिंदगी खाली सा नजर आता है। ऐसे विचार जो हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है, ऐसे विचार जो हमारे जिंदगी में कुछ नए रंग भरते हैं और हमारी जिंदगी को स्थिरता प्रदान करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं। और ऐसे खूबसूरत विचारों में से कोई एक नयाब जो विचार होते हैं उसे चुनकर हेलो हजारीबाग आपके लिए लेकर आता है। और आज का हेलो हजारीबाग आपसे कह रहा है ये बातें।

हेलो हजारीबाग, आज आपसे कहता है साथियों कि हमें जीवन में सभी इंसान को एक समान महत्व देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने, कुदरत ने इस दुनिया में हर इंसान को एक खास उद्देश्य एवं खास महत्व से गढ़ा है। अक्सर हम अमीर गरीब या जाति के भेदभाव से लोगों को ऊंच नीच की तरह देखते हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा, हेलो हजारीबाग कहता है आपसे कि हर इंसान को ईश्वर ने खास उद्देश्य से और महत्व से गढ़ा है। इसे बताने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके पास। एक व्यक्ति था, बहुत ही रईस था दोस्तों, लेकिन एक दिन अचानक से उसके घर में सारे बिजली गायब हो गए और रात में अंधेरे में उसके अंगूठी जो थी, वो भी हीरे की अंगूठी, उसके उंगली से निकलकर गिर गई। वो परेशान हो ढूंढने लगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसे पास में पड़ी हुई एक 5 रुपए की मोमबत्ती दिखाई पड़ी। उस मोमबत्ती के सहयोग से वो अमीर व्यक्ति अपने हीरे की अंगूठी को देख पाया, क्योंकि वो चमचमा रही थी। झट से उठाता है और खुशी खुशी उसे पहन लेता है। अब दोस्तों ये बताओ कि 5 रुपए की छोटी सी मोमबत्ती अगर ना होती तो क्या उस व्यक्ति को हीरे की अंगूठी मिल पाती? नहीं ना। अगर उस समय मोमबत्ती को वहां पर नहीं रखा जाता तो हीरा जो है वो तो गुम ही हो जाता ना। इसलिए मोमबत्ती का महत्व उस समय सबसे ज्यादा था, क्योंकि उस इंसान के लिए उसी मोमबत्ती ने रोशनी वहां पर प्रकट किया और उसी रोशनी में उसने अपने हीरे की उस कीमती अंगूठी को खोज पाया। तो दोस्तों मोमबत्ती की भी इंसान की तरह है। कोई इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वो सही वक्त पर आपके काम आता है तो वही इंसान छोटा नहीं हो सकता। वो आपके लिए सबसे बड़ा इंसान होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है जो आपके मौके पर आपको काम आता है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में इस बात को ध्यान रखें कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, समय बलवान है। जिस समय आपको जरूरत है और जो आदमी आपको मदद करता है वो सबसे महान होता है। तो अपनी जिंदगी में अगर इन ख्यालों को, इन बातों को याद रखिएगा तो हेलो हजारीबाग के साथियों आप हमेशा जिंदगी में आगे और आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी जिंदगी होगी बहुत ही खुशहाल।

हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हेलो हजारीबाग अब आपको लिए चल रहा है एक नए मोड़ की ओर। जहां बहुत सारी बातें हैं आपके आसपास की, साथियों आज है 17 अगस्त। जिस तरह हर दिन के आंचल में छुपे होते हैं, हर दिन के गर्व में छुपे होते हैं कई इतिहास, वैसे ही 17 अगस्त के गर्व में भी छुपे हैं कई इतिहास, जिसमें कि कुछ देशी हैं कुछ विदेशी हैं। तो चलिए एक एक कर हम खोलते हैं खबरों के पोटली को और बांचते हैं देश और विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी थी 17 अगस्त को और जिसके कारण पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज का दिवस माना जाता है बहुत ही खास। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा गीत आप सबके लिए।

हेलो जालबाग, 17 अगस्त का इतिहास भारत और दुनिया भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत में रेड क्लिफ लाइन का प्रकाशन हुआ था, मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई थी और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस जैसे ऐतिहासिक घटनाएं आज के ही दिन घटी थी। सबसे पहले बताएं कि किस तरह से रेड क्लिफ लाइन का प्रकाशन आज के दिन 1947 में हुआ था। भारत की आजादी की ठीक दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाली रेड क्लिफ रेखा को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया था। दोस्तों,

मदनलाल ढिगरा को फांसी दी गई थी आज ही के दिन। महान भारतीय क्रांतिकारी मदनलाल ढिगरा को ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटोन विलेज जेल में फांसी दी गई थी। दोस्तों आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली ब्रिटिश टुकड़ी की वापसी हुई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 17 अगस्त के दिन ही ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी स्वदेश के लिए रवाना हो गई थी, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन था।

17 अगस्त 1717 फ्रांस, रूस और प्रशिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन दोस्तों 1743 में स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1787 17 अगस्त को यहूदियों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में समूह बनाकर प्रार्थना करने की इजाजत मिली थी। और आज ही के दिन 217 अगस्त 1836 को ब्रिटेन की संसद में जन्म विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए थे। अगस्त 1858 हवाई द्वीप में पहला बैंक खोला गया था। 1909 में दोस्तों मदन लाल ढींगरा को वायरली और लाल काका की हत्या मामले में पेंटोनविली कैदखाने में फांसी दी गई थी, जिसके बारे में हमने तो आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही साथ 17 अगस्त 1914 में एक घटना घटी जिसके कारण आज के दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। लिथुवानिया ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और 1915 17 अगस्त को चक्रवाती तूफान से गेल्फेस्टोन और टेक्सास में 275 लोगों की मौत हुई थी। 1 बहुत ही खास आज के दिन की घटना दोस्तों कि 17 अगस्त 1917 में इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1959 में सोवियत संघ और इराक ने इराक में परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया था। और 1982 17 अगस्त के दिन जर्मनी में पहली सीडी लोगों के लिए उपलब्ध की गई थी।

दोस्तों, आज के दिन की खास घटना ये भी है कि 2002 17 अगस्त में रूस ने दलाई लामा को अपने देश के दौरे के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था और 2007 में 17 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की बेटी की सगाई रिपब्लिक सांसद जॉन हिंगर के बेटे के साथ भी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज के दिवस को बहुत ही खास माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के दिन बहुत ही खास शख्सियत की जन्मदिवस भी है, जिसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। 17 अगस्त को प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता शरद सक्सेना, जिनका जन्म 17 अगस्त 1950 को, और सचिन पिलगांवकर, जिनका जन्म 17 अगस्त 1957 को हुआ था, आज ही के दिन।

दोस्तों, एक हमारे दुख की खबर ये भी थी हमारे देश से कि आज के दिन 2020 में पंडित जसराज का निधन हुआ था। पंडित जसराज के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत ही नाम है। विश्वविख्यात गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को हुआ था। तो ये थी दोस्तों कुछ प्रमुख घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो घटी थी 17 अगस्त को, और जिनसे रूबरू कराकर आपको अपडेट किया आपका हेलो हजारीबाग FM 102.1 MHz पर।

तो दोस्तों और भी बातें होंगी और हेलो हजारीबाग आपको नई मोड़ की ओर लिए चलेगा नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप तमाम दोस्तों के लिए।

दोस्तों इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 और 34 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.1 मेगाहर्ट्ज पर अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो हजारीबाग, और आज आपके साथ है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव।

0: तो दोस्तों गाने की बारी हो चुकी है और भी बहुत सारे गाने लाइन में हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ और जरूरी बातों की ओर ले जाना जरूरी है। तो गीत के बाद ये प्यारा सा संदेश आपके लिए, आपके आकाशवाणी के लिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हेलो हजारीबाग, चलिए हम आपको लिए चलते एक खास जानकारी की ओर। दोस्तों, ये मौसम है बारिश का, ये मौसम है पानी पानी का। ऐसे में पानी की हर बूंद को हम कीमती समझे और उसकी रक्षा करें, क्योंकि जल है तो जीवन है, और जीवन अगर है तो सिर्फ जल के साथ ही। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग पानी की, जल की बर्बादी लगातार करते आ रहे हैं, जिसके कारण जल संकट जो है हमारे समक्ष अब धीरे धीरे कर देखने को मिलता है। ऐसे में जल संरक्षण कैसे करें, पानी की हर बूंद है कीमती, कैसे समझाएं जन जन को, चलिए एक एक कर हम आपको बताते हैं।

साथ ही जल संरक्षण हमारे जीवन, पर्यावरण और भविष्य तीनों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत ही सीमित है, ये आप सब जानते हैं। बढ़ती जनसंख्या जिस तरह अपने पांव पसार रही है, सूखे चारों तरफ पड़ते हैं जब बारिश नहीं होती, और दुरुपयोग जो होता है पानी का, इन सब के कारण जल स्तर जो है, भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। हर बूंद की कीमत है, इसलिए आज समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका संरक्षण दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। अब चलिए हम आपको छोटे छोटे स्वरूप बताते हैं कि किस तरह से आप जो हैं पानी की रक्षा कर सकते हैं, पानी का संचय कर सकते हैं, इनका संरक्षण कर सकते हैं।

दोस्तों पानी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है, कपड़े धोने, बर्तन धोने और जीवन के हर समस्या के निदान के लिए पानी की ही आवश्यकता होती है। इसलिए अभी जल बचाना बहुत जरूरी है, जैसा कि हम आप सभी को बता चुके हैं। तो कैसे बचाएं इन दिनों, खासकर बरसात के दिनों में, अब वर्षा जल का संचय कैसे करें, उसका संरक्षण करें कैसे? तो दोस्तों आज कल बारिश के पानी का संचय करना बहुत लोगों ने शुरू कर दिया, आप भी आज से शुरू कर दे। बारिश की पानी को छत या टैंकों में इकट्ठा कर ले, गड्ढा बनाकर अपने घर में उसे झांक कर रख सकते हैं, क्योंकि यही पानी आपके बर्तन धोने के काम आ सकता है, सिंचाई के काम आ सकता है। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन दिनों वर्षा जल का संचय जरूर करें, अपने घरों में, अपने खेतों में या आसपास। इसके अलावा अक्सर देखा जाता है घरों में लोग जो है नल खुला छोड़ देते हैं अपने काम के बाद, तो ऐसा कभी ना करें। आपका काम जब तक है तभी नल खोले और उसके बाद बंद कर दे। ऐसा अक्सर ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय देखा जाता है। तो अगर ये छोटी सी गलती अगर आप ना करें तो भी बहुत सारे पानी को आप बचा सकते हैं। अब खेती में बहुत सारा पानी लगता है, आप जानते हैं, फसलों के लिए, फसलों की जान होती है पानी। लेकिन बहुत ज्यादा पानी जो है वो फसल को बर्बाद भी कर सकती है और कम पानी सुखा भी सकती है। ऐसे में संतुलित किस तरह सिंचाई हम करें, तो इसके लिए आप टपका सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन हमारे किसान भाई, खेती हर लोग जो है वो अपना सकते हैं। खेतों में पानी की बर्बादी रोकने वाले ये आधुनिक तरीके हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा फुहार के तरीके से आप जो है पौधों को पानी दे सकते हैं, जिससे कि पानी, कम पानी में भी अधिक सिंचाई हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा पानी संरक्षित रह सकता है। इसके अलावा आप पानी का रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि आप कुछ पानी है, एक बार उसको धोए और उसके बाद फेंक देते हैं। उस पानी को अगर संचित करके रखे तो उस पानी को आप बर्तन की धुलाई में या फिर कपड़े की धुलाई में उपयोग कर सकते हैं, या किसी अन्य कार्य में भी, अपने घर को धोने में भी काम ला सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीजें हैं दोस्तों, अगर जीवन में इन सब का हम ख्याल रखें तो अपने भूमिगत जल को समाप्त होने से बचा सकते हैं और हमेशा जल के साथ खुशियां मना सकते हैं, अपने जीवन को आबाद कर सकते हैं, अभी भी, कल भी। इसलिए हर बूंद की कीमत जरूर समझे आप सब। ऐसा आप सबसे गुजारिश करता है आज का हेलो हजारीबाग।

तो दोस्तों, अगर आप हमारी बातों को मानते हैं तो हमारा और आपका रिश्ता और भी गहरा होगा और हमारा प्यार और भी इस तरह खिलता जाएगा।

ना हजारीबाग, चलिए कुछ बातें और हो जाए आपके और हमारे बीच। अब बातें होंगी तो अपनी सेहत की, क्योंकि दोस्तों अगर हम सेहतमंद हैं, आप सेहतमंद हैं, तभी ये सारे नज़ारे हैं, सारी खुशियां हैं और जीवन में हर कुछ है। तो स्वास्थ्य का ख्याल इस बरसात में कैसे रखें, इसके लिए खासकर सफाई कैसे रखें, सफाई का क्या महत्व है हमारे जीवन में, चलिए आपसे चंद शब्दों में बताते हैं। साथियों बताते चले कि स्वच्छ रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साफ सफाई से आत्मविश्वास बढ़ता है, हर समाज में अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अगर दोस्तों हम अपने व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें, डेली नहाएं, हाथ पैर धोकर रखें, खाने से पहले हाथ जरूर धोएं और अपने भीगे हुए बदन को अच्छे से पोंछ के ही कपड़े पहने, तो कई बीमारियां दूर हो सकती है, क्योंकि भीगे हुए जो शरीर होते हैं या हाथ होते हैं उनमें बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बीमारी के घर हैं। इसलिए अगर खाने से पहले हाथ धो ले तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हमें होने से रुक जा सकती हैं। संक्रमण का खतरा भी रुक सकता है अगर आप साफ सुथरा रहते हैं। साफ सुथरा माहौल में रहने से दोस्तों हानिकारक कीटाणु पनप नहीं पाते, इससे आप अपने को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास घर परिवार समाज के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि साफ सफाई केवल व्यक्तिगत जरूरी है कि आसपास की भी? दोस्तों जैसे शरीर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता जरूरी है, वैसे अपने आसपास घर ऑफिस की भी साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमने आपसे कहा कि स्वच्छता से जो है सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मानसिक और सामाजिक लाभ भी होता है, इसमें तनाव की कमी आती है। अगर आप साफ सफाई वाली जगह पर रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही सुकून और मानसिक शांति मिलती है। आत्मविश्वास पे भी वृद्धि होती है, अगर आप स्वच्छ और सुंदर दिखने से खुद के प्रति अच्छा महसूस करते हैं, तरोताजगी महसूस करते हैं, तो देखिएगा आपके आत्मविश्वास पे भी काफी वृद्धि होती है। तो दोस्तों सफाई का बहुत ही महत्व है जीवन में। आप सभी से हेलो हजारीबाग कहता है कि आप हर मौसम में स्वच्छ रहें ताकि स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह के हमारे संग यूं ही जुड़े रहें।

तो दोस्तों अब होगी बारी हमारे अखबारों की सुर्खियों की, जिसे बताएंगे हम आपसे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी खबर आ रही है शिक्षा जगत से भी, जिसकी आज शपथ ग्रहण समारोह है, इसके संदर्भ में भी हम आपको बताएंगे।

साथियों, इस प्यारे से गाने के बाद वक्त हो गया है आपको आज के खास अभियान से रूबरू कराने का। दोस्तों, बता दें कि आज पूरे झारखंड राज्य में प्लीज रीडिंग टाइम पठन अभियान 2026 की शुरुआत हो रही है, जिसका शीर्षक है मेरे शब्द मेरी कहानी। साथियों, सरकार मानती है, हर लोग मानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनकी नींव जितनी भी मजबूत होगी हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। हर बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, पढ़ना लिखना अच्छे से सीखे, इसके लिए सरकार की ओर से एक नए अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि रोजाना 20 मिनट तक हमारे बच्चों को, शिक्षक को और उनके अभिभावक को पढ़ने की आदत डालनी होगी। और इसके लिए एक शब्द है मेरे शब्द मेरी कहानी, और इसके लिए आज पूरे झारखंड राज्य में बच्चों को दिलाई जा रही है ये शपथ। हम मानते हैं कि किताबें एक जादुई दुनिया का दरवाजा है। हर किताब हमें कुछ नया सिखाती है, नई दुनिया नए लोगों और नए विचारों से मिलवाती है, बड़े सपने देखने की प्रेरणा देती है। हर पन्ने के साथ हम कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम हर दिन कम से कम 20 मिनट किताबें पढ़ेंगे। हम पढ़ने का आनंद लेंगे, अपने परिवार और दोस्तों और आसपास के लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। तो आइए दोस्तों, मेरे शब्द मेरी कहानी अभियान को सफल बनाएं और हम और आप भी जरूर 20 मिनट किताब पढ़ने पर दें। चाहे वो किताबें कहानियां की हो या फिर किताबें देशभक्ति की हो या किताबें पढ़ाई की हो या किताबें किसी भी विषय की हो, लेकिन 20 मिनट हम सब पढ़ाई करेंगे ताकि हमें देखकर हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और हमारा झारखंड बढ़ता जाएगा। पढ़ेगा झारखंड तभी बढ़ेगा झारखंड। और दोस्तों, बारी है अखबारों की सुर्खियों का। चलिए, क्या कहती है अलग अलग खबरें हमारे अखबार से, हम आपको बताते हैं।

दोस्तों आज हमारा हिंदुस्तान अखबार बड़े बड़े हेडलाइंस छापा है कि जिले भर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कजन ग्राउंड में आयुक्त ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को दी सलामी और कहा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। साथ ही हर अखबार के हेडलाइंस में है कि वंदे मातरम के नारों से गूंजा इलाका। झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की नई कमेटी

हर विद्यालय और संस्थानों में, कॉलेजों में ये जो वंदे मातरम का गीत है सबके द्वारा गाया गया, गुनगुनाया गया, जैसे चारों दिशाएं गूंज उठी थी वंदे मातरम के गीत के साथ। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे झारखंड राज्य में बच्चों और जो छात्र छात्रा हैं उनके साथ साथ हमारे प्रशासन के बीच में, हमारी सरकार के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और इस मतभेद को दूर करने के लिए प्रभात खबर छापता है एक खबर कि मंत्रियों की कमेटी ने छात्रों को आज वार्ता के लिए बुलाया है और इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। सीएम ने भी कहा है कि परीक्षा व्यवस्था झारखंड में अब बहुत ही दुरुस्त तरीके से की जाएगी और व्यापक सुधार के साथ नई शिक्षा प्रणाली और नई परीक्षा प्रणाली बहाल होगी। दोस्तों, प्रभात खबर की एक खास खबर है कि 36 लाख और 36 से ऊपर के परिवारों में सब्सिडी छतों पर सूरज की रोशनी छाएगी। सब्सिडी छतों पर सूरज की रोशनी छाएगी और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर घर तक पहुंचाएगी। दोस्तों, हमारी महिलाओं ने कई जगहों पर सावन मेला का भी आयोजन किया था और इस सावन मेला में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसके तहत बच्चों को भी प्रोत्साहित कर उन्हें जीवन में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। खेल के क्षेत्र में बता दें दोस्तों कि हमारे हजारीबाग में खेल महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। हर तरह के खेल, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज और भी कई खेलों में बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इसके लिए हमारे उपायुक्त हजारीबाग श्री हेमंत सती जी ने सबको आह्वान किया है, जितने भी खिलाड़ी हो अपने क्षेत्र में आगे आए और इसमें भागीदारी हिस्सा में सुनिश्चित करें। और देखते ही देखते हुए दोस्तों, वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का हेलो हजारीबाग से, लेकिन जाने से पहले कुछ बातें और हो जाए। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो हर परिस्थिति में हमें सफलता देती है और यही होते हैं सुंदर विचार। तो आज की सुबह के लिए एक सुंदर विचार हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये गीत आप तक।

दोस्तों हेलो, हजारीबाग जाते जाते आपको दे रहा है ये सदा। मतभेद अगर जिंदगी में किसी के साथ है तो इसे बारिश की तरह होने दीजिए। मतभेद बारिश जैसे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बरस कर खत्म हो जाए वो हमेशा बना ना रहे, इसलिए हमेशा अपने मतभेद को बारिश के समान रखें, लेकिन अपने प्रेम और विश्वास को हवा जैसा रखें, जो दिखाई ना दे लेकिन हमेशा साथ रहे, हमेशा अपनों के साथ रहे।

तो साथी होगी आपसे फिर से एक मधुर मुलाकात इसी आश के साथ। हेलो हजारीबाग की आज की महफिल से दीजिए अपनी दोस्त वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:58 हुए हैं। थोड़ी देर में 11 बजे से साथियों आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: अनंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा।
1: शिव आराधना इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी की बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बैजू मंगेशकर और साथियों की आवाज में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे, मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बैजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू। इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत, फैज अनवर ने इसे लिखा है, संदेश सांडिल्य का संगीत।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
4: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
4: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
4: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
4: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सहगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सहगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: चले।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
7: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
7: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
8: सखी सहेली।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती के का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कहने की जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो, बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं। देवनागरी में लिखा है ये और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

0: आह फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं, आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है। हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर इसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और जरूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग पर छात्रों और सरकार के बीच आज होगी चौथे दौर की वार्ता। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा पत्र, छात्रों की मांगों पर जल्द समाधान का किया आग्रह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। धनबाद से कोयंबटूर के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना पर काम जारी, रैक उपलब्ध होते ही ट्रेन का परिचालन होगा शुरू। और सावन की तीसरी सोमवारी पर आज शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला जारी, देवघर में लगभग 3 लाख कांवरियों के पहुंचने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों और सरकार के बीच आज चौथे दौर की वार्ता होगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आज की वार्ता में छात्र सरकार की बातों से सहमत होंगे।

0: वार्ता में गतिरोध सरकार की तरफ से कभी नहीं था। हम संवाद हमेशा चाहते थे। संवाद के लिए छात्र तैयार है, समय निर्धारित किया गया है, उसमें संवाद होगा, बात होगी। पूर्ण विश्वास है हमारे छात्र हमारी बातों से सहमत होंगे, कक्ष पर पहुंचेंगे, समझौता आज होगा। छात्र अपने अपने घरों, कॉलेजों को, लॉजों को, लाइब्रेरी को लौट जाएंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे।
1: वहीं प्रदेश भाजपा ने कहा कि आंदोलनरत छात्र पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में अब सीधे मुख्यमंत्री से बात होगी। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि छात्रों को मंत्रियों पर भरोसा नहीं है।
2: मुख्यमंत्री जी, आज की वार्ता में आप क्यों नहीं शामिल? छात्रों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि साहब, इन मंत्रियों पे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। कहा इसमें से कई लोग जो हैं प्रतिनिधिमंडल के वो छात्र भी नहीं है। कहा कि वो भाजपा समर्थक है। साहब, ये छात्र जेन्युइन छात्र हैं, ये आंदोलन कर रहे छात्र हैं, ये पीड़ित छात्र हैं। उनका कहना है TDPL जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उसने जितने एग्जामिनेशन कराए कैंसिल कीजिए।
1: झारखंड में छात्रों के आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त कराने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं ने हस्तक्षेप किया है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पत्र के माध्यम से श्री गांधी ने सरकार से छात्रों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर जल्द से जल्द आंदोलन को समाप्त कराने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी और वाणिज्य विषय की पुनर्परीक्षा 9 सितंबर को होगी, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होगी। पूर्व मध्य रेलवे के GM छत्रपाल सिंह ने कल सिंदरी पाथरडीह क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। छत्रपाल सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि रैक उपलब्ध होते ही धनबाद से कोयंबटूर के लिए अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।
3: सिंदरी क्षेत्र में बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। रेक उपलब्ध हो पाएगा तभी आगे कुछ उस पर कार्रवाई की। नए रेक जैसे जैसे बनते जाते हैं वो रेलवे बोर्ड अलॉट करता है, उसके बाद गाड़ी चलती है। पिछले 2 वर्षों में कई सारी नई सेवाएं या विशेष गाड़ियां यूज हुई है।
1: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 18 अगस्त को पुराने विधानसभा सभागार में बैठक कर राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति बनाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू और सह प्रभारी श्री बेला भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के राकेश सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बैठक में जमीनी स्तर से प्राप्त सुझावों के आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया समाचार एकांश के @ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में SIR के तहत नोटिस जारी करने और दावा आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि 24 अगस्त से SIR के तहत सुनवाई

भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपके लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम, और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग पर छात्रों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा पत्र, छात्रों की मांगों पर जल्द समाधान का किया आग्रह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। धनबाद से कोयम्बटूर के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना पर काम जारी, रैक उपलब्ध होते ही ट्रेन का परिचालन होगा शुरू। और सावन की तीसरी सोमवारी पर आज शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला जारी, देवघर में लगभग 3 लाख कांवरियों के पहुंचने का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: लेकर सहारा चल रहा है ये जहां।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं, और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही है कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हों, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निके निके से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटे सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूं, उनके साथ खेलती हूं। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था। स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नजर में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं। हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन मैं क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीजें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन की करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने की चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती है, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते कोई गीत गा रहे तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहने है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कहते, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें, तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन की कब करेंगे हम, अपने मन की बात ही कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई

थी वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही, और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए, और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिएं। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
2: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली

0: के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से यह हादसा हुआ।
1: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म पेइंग गेस्ट, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल किशोर कुमार।

0: से ताना।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दोपहर 2 बजे से सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच रांची में एक अहम वार्ता शुरू हो चुकी है। इस बैठक में छात्रों की ओर से रविन्द्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह, रविन्द्र कुमार रवि, कार्तिक सोरेन, राजेश प्रसाद, उमेश प्रसाद, शशांक कुमार, अंकित कुमार, आनंद कुमार और शालू कुमार सहित 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि सरकार परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और विवादित परीक्षाओं की जांच सीआईडी द्वारा 90 दिनों में पूरी की जाएगी, जिसकी निगरानी न्यायिक समिति करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने स्पष्ट किया कि पार्टी छात्रों की जायज मांगों के साथ है।
1: कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका इश्यू रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके।
0: इधर सीआईडी की टीम जेएसएससी कार्यालय पहुंची है। सीआईडी की टीम वर्तमान में आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ कर रही है और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सचिव सुधीर गुप्ता के आवास पर भी सीआईडी ने छापेमारी की थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो की 18 वर्षीय युवती के लापता होने के मामले में राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार को 10 दिनों का समय देते हुए दोषी और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई पर विस्तृत जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इस मामले में संबंधित थाने के 28 पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार के विरोध को अनुचित करार दिया है। उन्होंने कहा कि खनिजों पर अतिरिक्त सेस लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राज्य को पहले से ही पर्याप्त रॉयल्टी मिलती है।
2: ये जो कानून बना है झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया, ये जो एक्ट में जो संशोधन किया है संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, यानी पूरा देश के लिए लगाया, तो फिर झारखंड में लोगों को ऐ तौबा करने की समझ से परे लगता है, इनको सिर्फ राजनीति करना है।
0: सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी के दुर्लभ महासंयोग पर आज पूरे राज्य में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं और कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी 1.5 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा फौजदारी नाथ का जलाभिषेक किया, जहां उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में सूर्य मंदिर समिति की ओर से स्वर्ण रेखा घाट से भव्य सामूहिक जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा साहू सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की।
3: तीसरी सोमवार में समस्त जमशेदपुर और झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भक्ति और आस्था का जो अद्भुत संगम जमशेदपुर में देखने को मिला, ये ऐतिहासिक मैं कह सकता हूँ भीड़ था, इसके लिए सभी कांवरियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तीसरी सोमवार
0: खूंटी के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अहले सुबह से लेकर अब तक बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। सुरक्षा और सुव्यवस्थित इंतजामों के बीच बच्चे, युवा, महिलाएं और पुरुष सभी भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती धड़कन कार्यक्रम। सखी सहेली बस कुछ ही पलों।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, है ना? आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम
0: किया जाए। और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज तेतर भाग दो आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल,
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक से संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना,
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम ना छो करोगी तो कौन करेगा भला। हाँ
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लू है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या मुझे पागल समझती है तू? हाँ पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं, भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है
4: कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति दो महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
2: बहू को दो चार दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
1: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
5: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
1: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई हैं, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
5: अरे अम्मा क्या हुआ,
2: अरे
5: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया?
4: अरे आ गया, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
2: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब न बचूंगी, आए भगवान अब न बचूंगी, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान। हाय हाय,
4: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
5: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत?
2: हाय, अरे बेटा भगवान साहब करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
5: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूं।
2: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ, अच्छा हुआ अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
5: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम।
2: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, दस बीस वो भी ले जाएगा मेरा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी, हाँ कह देती हूँ।
5: तेतर तेतर बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
4: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
2: अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो बेटा, नहीं नहीं नहीं नहीं बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम, अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है तुम सब खुश रहो, हाय हाय अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर, खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना, हाँ कह देती हूँ कष्ट ना हो किसी को।
1: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा ना बचेंगी, बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
4: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
2: ए, बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है? भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? हाय, बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ, वो भी चौक से। हाँ, अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ, बड़ा दर्द है भैया।
1: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की महरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
6: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
7: हाँ हाँ, सही कहती हो। तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे, पर तेतर ना दे।
1: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
0: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक केसावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
8: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
9: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्योहार मन रहा है।
8: बिल्कुल।
9: तो ये जो है ना, ये जो त्योहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
8: बिल्कुल। और सुनाली, नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
9: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
8: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त ती उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
9: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
8: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है देखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
9: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद
8: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नाग पंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नाग पंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रहे हैं।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो ना, आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है।
1: बिल्कुल सही
0: बच्चे हैं और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों के पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है तो वो तो उन्हें इजी है और चटपटा स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो कितना अच्छा है।
0: और फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है,
0: या फिर नाक के बराबर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
0: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक

0: फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है।
1: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
0: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
1: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार है। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उसे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरे

0: शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल है उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
0: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उसपे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
1: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
0: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी
0: बात। मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार लाना होगा, सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
0: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स, पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ। इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है, रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी।

0: उसकी आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है, वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और हाँ
0: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
0: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस,
1: है ना। मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले। एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले। कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले। दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे। अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे। मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू, फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम। प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही 1/2 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी छोटी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें और उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज

0: डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेंटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग एक कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए, हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ,
1: जी
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है मुख्य समाचार। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. प्रदीप वर्मा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा आज घोषित की गई नई केंद्रीय टीम में डॉ. वर्मा को यह बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने जेएसएससी मामले में इस्तीफा देने वाले पूर्व अध्यक्ष नीरज सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई न होने की तुलना जेपीएससी मामले में हुई ख्यांगते की गिरफ्तारी से की है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर राज्य में सियासत तेज है। पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल पास होने के समय झारखंड के विपक्षी सांसद संसद में चुप क्यों थे। उधर झामुमो और कांग्रेस इस बिल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। रांची पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मादक पदार्थ, मोबाइल और 20,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। साहिबगंज जिले में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए अधीक्षण अभियंता राजकुमार के नेतृत्व में लगातार प्रयास जारी हैं। बीते एक महीने में बेतौना और साहिबगंज पीएसएस में 10 और 5 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर चालू हैं और खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदलने की कार्रवाई की जा रही है। और सावन की तीसरी सोमवारी पर लोहरदगा में मनोकामना मंदिर से देवा के शिव धाम तक 27 किलोमीटर की भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के कलाकारों की धार्मिक प्रस्तुतियों के बीच सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हेड फॉरवर्ड आ जाता है तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती है। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है। तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है उस चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
3: बिल्कुल।
2: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
3: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
2: हाँ।
3: इस बारे में बताइए।
2: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है,
3: जो
2: दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन, मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
3: तो वो पूरा साल,
2: हाँ, साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक,
3: मतलब क्या होता है,
2: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती
3: अखबारों में हम पढ़ते हैं,
2: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है। और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
3: बताइए ये कितनी महत्वपूर्ण,
2: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं, या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
3: बिल्कुल आपने सही कहा, आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरतें तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
2: जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, आई मीन इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
3: यानी जब आग लगती है तभी हम,
2: तभी हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
3: जी,
2: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है। उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है। पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 steps आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो। अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया। तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया। तो बोलता है नहीं, कल

0: मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं। तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते। देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे। पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है। वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए। अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में। ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं फिर आगे की बातें करते हैं।

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और

0: फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
1: महिलाओं में ज्यादा होता है?
0: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं। बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
1: कटोरी जैसा,
0: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
1: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
0: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखे, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखे, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है।
1: जी,
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में
0: exercise, सही मात्रा
1: है ना,
0: और वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच।
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए
1: जी। आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था बट पोरोसिस भी,
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी, अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है। विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप, पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है, मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हॉर्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं?
0: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
1: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर। तेरा जिक्र है,
0: तेरा जिक्र है, करेक्ट।
1: क्या गाना है,
0: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं
0: जी।
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल, अगर जिस वो पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं,
1: वो ही है जो सब चलाता है
0: जी।
1: अगर एक्टिविटी नहीं है तो सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे। देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा, और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT एपिसोड 1351।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार, धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
3: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
4: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
5: जी दादाजी।
6: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
7: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
5: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
6: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
7: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
0: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
7: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
8: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
5: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
7: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
9: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
5: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
9: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
5: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
9: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
5: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
9: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
5: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
9: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
5: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
9: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
5: जी दादी।
6: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
4: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
5: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
4: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
9: जी।
4: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
9: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा लो, चलो चलो गटक जाओ।

0: शाबाश।
1: ओ ये तो बहुत कड़वी है ये।
0: अच्छा इसे खाने में क्या देना है?
2: देखो आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
1: जी दादाजी।
3: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
2: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
2: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
3: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कुछ ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सुमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा। उफ।
4: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
2: अरे सुमेश बेटा जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
0: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ मैं बस अभी आई, तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ और शाम तक
2: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
0: बेटा।
1: जी।
3: सोमेश जलन गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
4: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना

0: ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
1: ऐसे नहीं मानेगा
2: साहब, मत करो साहब।
1: चल सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब
3: जी सर।
2: साहब
3: कमाल जी, कमाल जी से कमेंगे।
4: हमारे तीर कमाल करो।
2: हम लोग करो।
0: अबुआ राज, अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
5: ५८५७ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
6: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
5: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
6: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
5: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
1: Amen! तुम्हारा नाम क्या है?
2: जी, जी मेरा नाम कोड़ा है।
1: ओके, तो तुम कोड़ा हो?
2: जी।
1: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
2: जी ये मेरी जमीन है।
1: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
2: जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
1: पिछले साल भी तुमने यही बोला था, सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
2: नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
1: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
3: जी सर,
1: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
3: जी सर।
1: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
3: जी सर।
1: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
3: जी सर।
2: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो, साहब साहब साहब ऐसा मत करो।
1: चलो हटो,
2: साहब साहब
1: आओ,
2: साहब साहब
1: आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा।
2: साहब मत करो साहब।
1: चल सिपाही।
3: यस सर।
2: साहब
1: इसको हंटर मारो।
2: साहब
3: जी सर।
2: साहब साहब मत करो, साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब
5: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं

0: कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। बाजार में नहीं बेच सकता। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
1: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठकी बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ, ठीक कहा तुमने।
3: हाँ,
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
1: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
0: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानू मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
1: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
0: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार, अरे हमारी जमीन
5: जब्त
6: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
7: सही बोले, सही
6: कहे। हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
8: हाँ, सही कहा।
6: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
7: तो भैया सही बात
8: कह रहा है।
6: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
8: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
6: लेकिन भाइयों, भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
9: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
6: अब करो या मर जाओ।
9: अब करो या मर जाओ।
6: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
9: अबुआ राज, अबुआ तिसुम।
6: अबुआ राज।
1: इस सभा में सिदू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया।

0: 거야. उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिदो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिदो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिदो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिदो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1351। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है।

0: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MMDR संशोधन विधेयक 2026 पर राज्य सरकार को घेरा है। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बाबूलाल मरांडी के संवाददाता सम्मेलन पर पलटवार करते हुए MMDR संशोधन विधेयक को राज्य के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक झारखंड के खनिज अधिकारों और राजस्व को प्रभावित करेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने राहुल गांधी के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के छात्र 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद आने की बजाय केवल पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ने के आरोपों को कांग्रेस की पुरानी नीतियों का नतीजा बताया। चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPSC के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। SP अनिमेश नेथानी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि वह एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव आया हुआ है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। खूंटी में झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में बैठक में केंद्र के खान और खनिज विधेयक 2026 के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनी। पार्टी ने चेतावनी दी कि बिल वापस न होने पर सड़क से सदन तक प्रदर्शन होगा। और साहिबगंज में गंगा मिशन कोलकाता द्वारा बाबूलाल नंदलाल बोहरा ट्रस्ट परिसर में स्कूली बच्चों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद उपाध्यक्ष विनीता देवी ने बच्चों को पौधे सौंपे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। पेश है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

अकबर एंथोनी। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनते हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है हलचल।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। फिल्म का नाम है मन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा खेती बारी, बस कुछ ही देर में।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन की संतोष के धन्य से जोहार प्रणाम और स्वागत करो ये कार्यक्रम में। तो देखा कि एक बार फिर लिए है बहुत सारा जानकारी लेके अपन किसान भाई बहन का, तो यही कहे कि पूरा कार्यक्रम सुनतीन और अपन पास पेन कॉपी जरूर रखतीन और जो भी जरूरी बात हम बतेबे ओकरा नोट करतीन। देखा कि अब बरसात के मौसम में बहुत सारा चीज हमने के देख रेख के भी करे के चाहिए, खान पान से लेकर खेती बाड़ी संबंधित हर प्रकार के सावधानी बरते के चाहिए। और खास करके हमारे अपन घर में जो भी छोट मोट बच्चा होती है, गोरु डांगर होती है, बूढ़ा बुजुर्ग होते हैं, सब पर विशेष ध्यान देती और अखनी के देख रेख के साथ साथ हम इनके खेती बाड़ी पर भी विशेष ध्यान दिए पड़ो है। क्योंकि देखा कि हमने के खेती बाड़ी ही जीवन के जो हमने के विकास हुए वो हो पाओ है। खेती बाड़ी ही जब हमने के किसान भाई बहन करो थी तब आगे बढ़ो थी, खेती बाड़ी से आमदनी के जरिया बनो है। तो बहुत से ऐसा फसल हो है जेकरा किसान भाई बहन के करके आगे बढ़ सको थी, ओकरे हम आज बात करबे कि जे मोटा जो अनाज हो है। मोटा अनाज का एक मतलब हो गलो कि बाजरा हो गलो, महुआ हो गलो, ज्वार हो गलो, कोदो हो गलो, कुटकी हो गलो, ये सब का हो गलो मोटा अनाज। और अकर जे उपयोग है आजकल के दौर में बहुत ही बढ़ल जले है। सबसे पहले अकर में सबसे बड़ी बात ये हुआ है कि कम पानी में आसानी से उपजावल जा सको है। और अकर में जो किसान भाई इनके फायदा हुआ बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ है। और सबसे पहली बात है कि मोटा अनाज में देखवा कि जब स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करिए मोटे अनाज में फाइबर हुआ है, फिर प्रोटीन हुआ है, आयरन हुआ है, कैल्शियम हुआ और कई गो पोषक तत्व अकर में पावल जाए और ये शरीर के स्वस्थ रखे में मदद करो है। और देखो आज के समय में लोग स्वस्थ भोजन की ओर बढ़े थी और यही कारण कि मोटे अनाज की धीरे धीरे मांग भी बढ़ते जेले। तो बहुत अच्छा चीज है मोटे अनाज के हमने के खेती बाड़ी करे चाहिए, साथ ही कोशिश करे चाहिए कि हमने मोटा अनाज के सेवन करिए जेकर से हर प्रकार के हमने को प्रोटीन मिलते और हमने के शरीर भी स्वस्थ रहते और जब हमने अकरा अनाज के बेचबे तो ओकर आमदनी भी अच्छा खासा है। सबसे पहले बात है कर जो मांग है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे और बढ़े के कारण तो बतेबे के लिए कर फाइबर प्रोटीन आयरन और कैल्शियम ये सब पावल जाए जेकर से खाए से हमने के किसान भाई बहन की या जे भी खाते नौकरी में शरीर बहुत ही स्वस्थ अकल में रहो है। और देखा कि अगर हम मोटे अनाज की खेती के बारे में और भी बात करिए तो इसे खेती बाड़ी करे खातिर बहुत सारी जानकारी हमने के रखे के चाहिए। और कोई अगर नवा नवा किसान है तीन जो मोटे अनाज की खेती करे चाहिए करे कोशिश करे थोतीन तो सबसे पहले कि ओकरी के सही से जानकारी रखे पड़ते। अब जानकारी जैसे कि हो गलो कि कोई अनुभवी किसान है थुन ओकर से भी जानकारी लेके प्राप्त कर सको थुन, या तो कहीं कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर भी जानकारी लेके अपन खेती बाड़ी से जुड़ सको थीन कि मोटे अनाज की किस प्रकार से खेती करे चाहिए। तो ये सारा चीज है जेकर से हमने के किसान भाई बहन को बहुत लाभ मिलते। और एक बात और बोलना चाहिए कि खेती बाड़ी में देखा कि मोटे अनाज जो हमने की खेती बाड़ियों के सबसे पहली बात है अकर में बहुत ही कम पानी के प्रयोग करल जाए, दूसरी बात अकर में कम लागत भी लगो है और अकर में कम साधन में उत्पादन तो इन कर सको है। तो देखा एक बहुत अच्छा चीज है जगह किसान भाई बहन के करे चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सूखा प्रभावित इलाकों में भी फसल के किसान भाई बहन अकर उपयोग कर सको थी। और देखा कि सरकार भी मोटे अनाज के बढ़ावा दे रहा है और ओकरा खातिर ले श्री अन्न के नाम से प्रोत्साहित करल जा रहा है। तो देखा कि सरकार भी एक विशेष ध्यान दिलती ने कि मोटे अनाज पर विशेष ध्यान दिए चाहिए। अगर हमें बात करिए कि अगर मोटे तौर पर हमने निष्कर्ष निकालिए तो देखा कि मोटे अनाज के किसान की आमदनी बढ़ा हुआ है, दूसरी बात है कि पानी बचा हुआ है, तीसरी बात है कि स्वस्थ जीवन अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावो है। यही सब खातिर हम इनके आज के दौर में मोटे अनाज के महत्व बढ़ते जा रहे हैं। तो देखा बहुत ही फायदेमंद है और हम यही चाहे किसान भाई बहन की कि मोटे अनाज की खेती बाड़ी करतीन क्योंकि अकर से हमने के हर प्रकार के फायदा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम इन खेबे खाए से शरीर भी स्वस्थ होते है, दूसरी बात कि कम लागत में हमने इनका उत्पादन कर सको ये, तीसरी बात कम पानी में कर सको ये, और अगर में जो प्रोटीन जो पावल जाए हर प्रकार से ओकरा खाए से भी हमने के शरीर स्वस्थ। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि जब मांग दिन ब दिन बढ़ते चले ओकर से हमने के आमदनी भी बढ़ते। तो देखा कि बहुत उम्मीद है कि हमने की जानकारी से हमने के किसान भाई बहन के लाभ मिलते। तो कार्यक्रम में पूरा बंधन रहती और भी जानकारी आज के कार्यक्रम में ले लिए किसान भाई बहन के तिले। तो अभी हमने चलो सुनो ये एक जरूरी संदेश ओकर बाद एक बहुत ही प्यारा गीत ना सुनबे ताकि हमें के कार्यक्रम में हर प्रकार के मनोरंजन भी साथ में होते रहते। तो हमने सभी मिलके सुनो एक जरूरी संदेश साथ एक गीत नाथ।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे है,
1: निर्बल हिया निर्धन हिया, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, निर्बल हिया निर्धन हिया बेटी गरीब के, तिलक दहेज मारो हम बदनसीब के।

देखा कि हमने सब सुन लिए एक बहुत ही प्यारा लोकगीत नाथ और साथ ही जरूरी संदेश सुन लिए और ये गीत के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश ले कि हमने अपन बेटी बचाओ के बीच के खातिर संदेश लगाना कि बेटी के नाम रखना बचावे चाहिए क्योंकि बेटी देश के भविष्य वो है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा हमें लगले और उम्मीद करे कि गीतनाथ सुन के हमने की किसान भाई बहन जरूर कैसे प्रेरित हो होती। अब जैसे हमने बात कर पे कि किसान खातिर तकनीक और आधुनिक खेती से किस प्रकार से लाभ मिल रहा है तो ओकर बारे में हमने बात करी आज। तो देखा कि आज के समय में खेती और नई तकनीक के उपयोग से किसान के कम लागत में बड़ा बहुत ज्यादा उत्पादन कर ले थी और आधुनिक के खेती में जैसे अगले मशीन अगले उन्नत बीज अगले आधुनिक सिंचाई अगले जैविक खाद और मोबाइल तकनीक के महत्वपूर्ण भूमिका हो है। तो ये सब चीज है जगह से हमने के किसान भाई आधुनिक पद्धति के ओर बढ़लती नर कर ले भी थी खेती बाड़ी। अगर में सबसे पहली बात है कि उन्नत बीज बेसी उत्पादन देवे वाला और रोगी प्रतिरोधी बीज के उपयोग करे खातिर चाहिए जकरा हमने बात कर सको आधुनिक खेती के बारे में। ड्रिप सिंचाई की अगर हमने बात करिए तो देखा ड्रिप सिंचाई में बहुत कम पानी में तो अपन फसल के लगा सको उपजा सको जितना मात्रा में पानी चाहिए वो मात्रा में पानी दे के अपन फसल के तू लगा सको। ठीक है ड्रिप जो ड्रिप सिंचाई जो हुए है जड़ में पानी जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमने पहले परंपरागत विधि से मोटर प्रयोग कर लिया और मोटर प्रयोग करे से ये हो कि बेवजह पानी बह जाले और बहुत जगह फसल में जाके जमा भी हो जाले जेकर से हमने के फसल के सड़ा दे ले और बर्बाद हो जाले। तो ड्रिप इरीगेशन जब सिंचाई ले है तो अकर से बहुत फायदेमंद हो साबित होले है कि जितना मात्रा में पानी चाहिए उतनी मात्रा में जड़ में पानी जाए और सबसे बड़ी बात है कर में खर पतवार ना हुए जो कि हमने के फसल के लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ है खर पतवार जो कि हमने के फसल के बढ़े से रोको है। ये सबसे भी तू ड्रिप सिंचाई से बच सको है। फिर देखा कि अब आधुनिक जीवन में कृषि मशीन भी आ चुके है। अगर कृषि मशीन की हमने बात करिए तो देखा कि ट्रैक्टर आ गए है फिर देखा कि पावर टीलर आ गए है फिर अगले सीड ड्रिल आ गए है और हार्वेस्टर ये सब सारा चीज हो गए है। और अगर में सबसे बड़ी बात है कि मजदूरी जो हमने ज्यादा मात्रा में लगा हो लिए वो कम हो गए है। और अगर मैं अभी देख आधुनिक खेती में देखा कि नई तकनीक में और आधुनिक में देखा कि मिट्टी के जांच बहुत बड़ी चीज है मिट्टी के जांच क्योंकि बिना मिट्टी के जांच करे ले कोई भी फसल न लगा चाहे किसान भाई बहन कहते क्योंकि बिना मिट्टी की जांच से थोड़ा ही ना पता चलते कि अगर में मिट्टी में कौन सा कमी है कौन सा तत्व कमी है। तो मिट्टी जांच हम कहबे किसान भाई बहन के मिट्टी की जांच जरूर से जरूर करी थी क्योंकि मिट्टी के जांच से बहुत फायदेमंद साबित हुआ है और उकर से ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कितना कमी है उकर से तुरंत तो अपन पोषक तत्व की कमी के दूर कर सको। फिर देखा कि अगर आधुनिक खेती में बात करिए और तकनीक के बारे में बात करिए तो उकर में एक जैविक खेती भी हुआ है। जैविक खेती में कहेंगे मतलब हो गए कि गोबर खाद के प्रयोग हम कर सको अपन खेती बाड़ी में फिर वर्मी कंपोस्ट होकर कर सको और जैविक खाद का उपयोग करे से सबसे बड़ा चीज है कि हमें के मिट्टी में पोषक तत्व बहुत ही अच्छा मात्रा में बनल रहते हैं और भूमि बंजर होने से बचते। तो बहुत बड़ा अच्छा चीज है कि जैविक खेती करे चाहिए हमने के किसान भाई बहन के। और देखा कि मौसम तकनीक से अगर हमें बात करिए कि मोबाइल तकनीक जेकरा हम बोल सको ये मोबाइल तकनीक में देखा कि किसान मोबाइल से मौसम बाजार भाव और खेती से जुड़ल सारा जानकारी प्राप्त कर सको थी। तो देखा कितना बेस है चीज मोबाइल से भी तू अपन कर सको है। फिर हम अगर आगे बात करते तो ड्रोन तकनीक भी हुआ है। ड्रोन तकनीक से खेत के निगरानी और जरूरत के हिसाब से दवा छिड़काव करे में मदद मिलो है। तो बहुत बढ़िया चीज है कि ड्रोन तकनीक से भी तू अपन खेती से जुड़ के अपन खेती के फसल के बचा सको है। रुकर में सबसे बड़ी बात है कि जरूरत के हिसाब से दवा मिलाकर छिड़काव भी तू कर सको है। फिर हो गलो कि फसल विविधीकरण में हो गलो किसान खाली एक फसल पर निर्भर न रह के चाहिए ओकर में अनाज में दलहन हो गलो तिलहन हो गलो सब्जी और फल की खेती भी
कर लिए चाहिए। कैसे सब देखा कि बहुत फायदेमंद साबित होते हैं अभी किसान भाई बन के। तो ये तो हो गए कि आज हम बतेलिए मोटे अनाज के बारे में और किसान के नई तकनीक और आधुनिक

0: कहते लावई है। ओकरे बाद हमने ले लिया है कि बरसात के मौसम में मुर्गी पालन कैसे करे चाहिए, किस प्रकार से आमदनी होते, ये सारा जानकारी एक भेंटवार्ता ले लिया है, ओकर में सुनबे। तो हम उम्मीद करे कि भेंटवार्ता सुन के हमरे के किसान भाई बहन जरूर लाभ लेती और मुर्गी पालन से जुड़ती। तो हम इन सभी मिलकर सुन लो ये एक भेंटवार्ता।
1: भाई बहनों, आज हम बातचीत करेंगे एक मुर्गी पालक जो कि बहुत ही मेहनत और लगन से मुर्गी पालन का काम करते हैं, और आज इनसे जानेंगे कि मुर्गी पालन करने से क्या क्या फायदे हैं और मुर्गी पालन करने का सही तरीका क्या है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
2: जी बहुत बहुत नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम हुआ श्याम कुमार और हम इचाक प्रखंड का मने गाँव का रहने वाले हैं
1: जी,
2: और वहीं से ये मुर्गी फार्म का कार्य संभाल रहे हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए कि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो हम आपसे आज बातचीत करेंगे मुर्गी पालन कैसे करते हैं और सही तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप मुर्गी पालन कितने सालों से कर रहे हैं।
2: तकरीबन हम अभी 4 सालों से मुर्गी फार्म का कार्य कर रहे हैं।
1: 4 सालों से?
2: हाँ, 4 सालों से।
1: तो जो मुर्गी पालन कर रहे, तो प्रेरणा कहाँ से मिली आपको मुर्गी पालन करने के लिए? आप क्यों सोचे कि हम मुर्गी पालन करें?
2: नहीं, इसमें देखें काफी मुनाफा भी है। तो हम जब रांची गए हुए थे कृषि केंद्र, तो वहीं से हमको इसका जानकारी मिला और हम वहाँ पे ट्रेनिंग तकरीबन 1 सप्ताह का किए थे। तो वहीं से हमको मुर्गी फार्म के बारे में बताया गया कि इससे क्या फायदा है, कब क्या क्या करना है, कितने चूजे एक समय में रखना है। तो वहीं से हमको ट्रेनिंग मिला और हम उसी टाइम से मुर्गी फार्म कर रहे हैं। तो अभी हम तकरीबन 4 साल से कर रहे हैं, तो हमको काफी इनसे फायदा हुआ है।
1: तो मतलब आप ट्रेनिंग ले चुके हैं मुर्गी पालन करने के लिए? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रेनिंग ली है और मुर्गी पालन करने का सही तरीका आपको पता है और मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, अभी देखिए कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में विशेष ध्यान देना पड़ता है मुर्गियों के प्रति। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप जो घर बनाए, शेड बनाए हैं, तो किस प्रकार मुर्गियों को रखने के लिए बनाए हुए हैं?
2: देखिए, अभी तो वैसे बरसात का सीजन है, तो हम शेड के लिए क्या किए, एक समतल जगह का चयन किए हुए हैं
1: जी।
2: और जो समतल जगह है वो काफी ऊंचा है, थोड़ा जमीन से 1 या 2 फीट ऊंचा, ताकि जो बारिश का मौसम में पानी जम ना सके, पानी बाहर निकल जाए। वैसे क्या होता है, अगर पानी जम जाए तो मुर्गियों की मरने की आशंका बढ़ जाती है
1: जी, जी।
2: तो सबसे पहले हम लोग को समतल जगह पे कुछ ऊंचाई पे बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और दूसरा हो गया कि जो हम लोग छत बनाते वो ढाल नुमा हो, है ना, ताकि पानी बाहर निकल जाए, उसी के ऊपर ना रह जाए। और मुर्गियों के लिए हम लोग बिजली हो गया, पानी और उनके दाने का एक उत्तम प्रबंध करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: है ना। और उन लोग को समय समय पर ये तीनों चीज हम लोग देते रहते हैं। वैसे क्या होता है कि देखिए, गर्मी में मुर्गियों के मरने की भी आशंका बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो हम लोग बीच बीच में पंखा लगवा देते हैं, ताकि स्वच्छ हवा आ सके
1: जी।
2: और ऐसी जगह हम लोग चयन करते हैं ताकि एक स्वच्छ हवा प्रवेश उसमें हो सके।
1: बिल्कुल।
2: तो हवा इधर से और उधर से एकदम निकल जाए दूसरी ओर से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ऐसी जगह का चयन करें जहाँ से हम लोग को, जिसे हम लोग चूजा गिरवा रहे हैं, या फिर हम लोग को जिसे बड़ा हो गया उसको हम लोग को बेचना है, तो हम लोग को जो गाड़ी आ रही है उसको आने जाने में दिक्कत ना हो।
1: बिल्कुल।
2: तो सबसे बेहतरीन रहेगा कि रोड के किनारे ही हो, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आएगा चूजा, तुरंत जाएगा। तो इससे हम लोग को बढ़िया होता है, मुनाफा भी और किसी तरह का दिक्कत भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल। आप इस तरह से बरसात के मौसम में ये सोच के बनाए कि मुर्गियों की सही देखभाल की जा सके, उसका सही तरीका क्या है, उसको घर का कैसे रखा जा सकता है। आगे ये जानना चाहेंगे कि आप खाने पीने में किस तरह से देते हैं, उसका आप खाने के लिए सही तरीका क्या रखेंगे, कैसे बर्तन में आप उसको खाने के लिए देते हैं?
2: इसके लिए हम लोग तकरीबन 5 टाइम हम इन लोग का दाना और पानी व्यवस्था करवाते हैं। 5 टाइम पानी हम लोग को स्वच्छ दिलाते हैं, हमेशा पानी चेंज करते रहते हैं, ताकि जैसे गंदा पानी अगर रह जाए, तो गंदा पानी पीने से तो मौत का आशंका बढ़ जाता है मुर्गियों को। तो हम पानी लोग को हमेशा हटाते रहते हैं और देते रहते हैं बढ़िया पानी। तो जैसे मेरे पास अभी 200 चूजे हैं, तो इसके लिए मेरे पास 6 बर्तन पानी के लिए हैं और 6 बर्तन दाना के लिए हैं।
1: बिल्कुल।
2: ताकि आपस में मुर्गियां क्या होती है, झगड़ने भी लगती है ना, तो वैसे इन लोग के लिए सबके लिए पर्याप्त हो जाता है, 6 पानी के लिए बर्तन है और 6 दाना के लिए है।
1: तो इस तरह से आप उसको खान पान में देते हैं, और अच्छी बात है कि सही तरीका सब देते हैं ताकि मुर्गियों में कोई तरह का दिक्कत ना हो। आगे ये जानना चाहेंगे कि आप जो चूजा लाते हैं, कौन सा किस्म का प्रयोग करते हैं चूजा का?
2: बहुत तरह का नस्ल है ना। तो अभी मेरे पास जैसे 4 नस्ल ज्यादा मार्केट में डिमांड हो रहा है। इससे पहला हो गया कैरिबो आता है और हाइब्रो भी आता है, बाबकोब हो गया, फिर कृषि ब्रो हो गया। तो अभी जैसे मार्केट में डिमांड के अनुसार अभी हम 2 ही चूजा का रख रहे हैं, कैरिबो और हाइब्रो। इन दोनों का मार्केट में भी काफी डिमांड है और मुनाफा भी

0: बढ़िया होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: यही हम अभी दो ही नस्ल रखे हुए हैं अपने पास।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से आप इस तरह का किस्म का आप चूजा रखे हुए। आगे ये जानना चाहेंगे कि आप जो चूजा रखे हुए, तो एक एज होता है 0 से लेके 15 दिन या तो 11 से लेके 15 दिन, तो इस तरह से आप खाने में क्या क्या उसको देते हैं?
0: जैसे कि जब हम चूजा गिरवाते हैं तो उसका एज तो 0 से 10 दिन के बराबर होता है,
1: बिल्कुल
0: तो उस वक्त हम उन लोग को प्री स्टार्टर देते हैं,
1: जी।
0: है ना। उसके बाद जैसे अगर उन लोग का बढ़ते गया दिन 11 से 21 दिन आ गया, तो हम लोग स्टार्टर देने लगते हैं। और जब 21 दिन से लोग बढ़ जाता है ना, 22 दिन हो गया, 22 दिन से अभव हो गया, तो हम लोग एक फिनिशर उन लोग को देने लगते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये स्टार्टर और प्री स्टार्टर इन लोग को छोड़ देते हैं, केवल फिनिशर देते हैं।
1: जी। इस तरह से सही तरीका अपनाते हैं, विशेष ख्याल रखते हैं कि
0: हाँ
1: सभी एज का जो बच्चे चूजे होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और भी देखिए कि होता ये कि जो चूजे होते हैं अक्सर क्या होता है कि बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो इसका वजह क्या होता है, आप उसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं ताकि मुर्गियों को बचाया जा सके?
0: देखिए मुर्गियों में तो दो तरह का बीमारी होता है ना, मैरिक्स जो एक पहला है जो कि काफी भयानक इसको बोला जा सकता है मैरिक्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मुर्गियों में इनका हम लोग को लक्षण दिखने लगता है।
1: जी।
0: पहला क्या होता है जैसे कि उन लोग का जो मुर्गियों का पंख झड़ने लगता है ना, पंख झड़ने लगता है। दूसरा मुर्गियों का मुर्गियों आवाज निकालना बंद कर देती है, उसको हम लोग गूंगापन बोल सकते हैं जैसे, और पक्षाघात, अचानक गिर जाना, बेहोश होके, है ना। तो ये सब तीन मुख्य इन लोग का लक्षण है। तो अगर हम लोग शुरुआती में जो आप बतला रहे थे 0 से 10 दिन के भीतर लोग को अगर प्री स्टार्टर हम लोग ना दें, है ना, तो इन लोग का मौत का जो आशंका होता है वो 60 से 80% बढ़ जाता है। तो हम लोग को इन लोगों को शुरुआती में टीका देना पड़ता है। जैसे कि कुछ कुछ टीका हो गया, वैक्सीन में आता है लसोटा वैक्सीन,
1: अच्छा,
0: है ना, लसोटा वैक्सीन इसको हम लोग 6 से 7 दिन के भीतर में दे देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसको देने का क्या तरीका है, जैसे ठंडा पानी में हम लोग दे सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: ठंडा पानी के साथ मिलाकर। और एक और आ गया कलोटा वैक्सीन का ब्रूस्टर वैक्सीन, है ना, इसको भी हम लोग ठंडा पानी के साथ ही देते हैं। ये दो चीज हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं ताकि मौत का इन लोग का आशंका कम हो जाए।
1: बिल्कुल
0: जी जी।
1: तो इस तरह से आप मुर्गियों को विशेष ध्यान रखते हैं, बीमारी से जो होती है आप उसको तुरंत इलाज करवाते हैं ताकि मुर्गियों को मरने से बचाया जा सके। चलिए तो हुआ आपका बीमारी की बात, अब हम बात करेंगे कि चूजों को आप खाने के लिए क्या क्या देते हैं, मतलब दाना में आप क्या प्रयोग करते हैं?
0: वैसे भी भूमि फीड देते हैं, है ना, जिसका क्या है कि मार्केट में दाम भी कम है और मुर्गियां इस दाना को खा के इनका वजन भी काफी जल्दी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो भूमि फीड भी बहुत बढ़िया है इन लोग के लिए।
1: तो इस तरह से हो गया कि बीमारी और दाना का बात हो गया। अब हम बात करें कि आप मुर्गी पालन कर रहे तो आपको फायदे क्या नजर आया, फायदा क्या होता है, आमदनी क्या होता है? आप जो मुर्गी जब बड़ी हो जाती है, जब बेचने लायक हो जाती है, आप कहाँ बेचते हैं और कितना आपको आमदनी हो जाती है?
0: देखिए इसमें तो ऐसा नहीं है कि हमको दिन भर इसमें लगा हुआ रहना है, है ना। हम आपको शुरू में बताएं कि हम इन लोग के लिए 5 टाइम एक निर्धारित कर दिए कि हमको इसके इतना टाइम में जाना है, पानी चेंज करना और दाना दे देना है। इससे हमको क्या हुआ कि हम अपना बीच में पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, इससे मुनाफा हो रहा काफी। मेरे पास वैसे अभी 1000 के आसपास है चूजे, है ना, तो और कुछ बड़ा भी है तो अभी मार्केट में 120 का रेट मिल रहा है, है ना। तो मेरे यहाँ से 90 का थोक से निकल जाता है, तो जैसे कि अगर हम 200 मुर्गियां बेच रहे हैं तो 90 के भाव से 18000 के आसपास आ जा रहा है, तो काफी मुनाफा हो रहा है इसमें। हमको तो दिन भर इसमें लगा नहीं रहना है ना। और सबसे पहला चीज लोग को ध्यान में भी रखना कि जो शेड हम लोग बना रहे हैं वो 30 से 35 फीट के आसपास होना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चौड़ाई हम अपने अनुसार रख सकते हैं कितना चौड़ाई होना है ताकि मुर्गियां आपस में इधर उधर टहल सके।
1: और कुछ इस तरह से आप मुर्गी पालन का देखरेख और प्लस का आमदनी हो जाता है। और भी जैसे आमदनी का बात हो गया कि आप इतना कमा लेते हैं,
0: बिल्कुल इसके लिए बेहिचक एकदम कीजिए, बहुत फायदेमंद होता है ये।
1: जी बिल्कुल। और देखिए कि श्याम जी आपने मुर्गी पालन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है और बहुत अपना बेशकीमती समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखिए कि हमने सुन लिया एक भेंट वार्ता और जानकारी ले कि मुर्गी पालन बरसात के दिन में कैसे करे चाहिए और किस प्रकार से आमदनी हो और रख रखाव कैसे करे चाहिए, सारा जानकारी दिलथिन। और ये जानकारी दिए थे किसान हेल्थिन श्याम कुमार और उनका से बातचीत कर दिलथिन संतोष कुमार दास। तो देखा कि हमने उम्मीद है कि जानकारी सुन के जरूर किसान भाई बहन लाभ लेथिन और कोशिश करतीन कि अगर मुर्गी पालन करोथिन तो मुर्गी पालन करे से पहले कौन कौन प्रकार से हमने की तैयारी करे चाहिए और खान पान में कब कैसे देना चाहिए, सारा जानकारी रखे चाहिए। साथ ही ये भी जानकारी रखे चाहिए कौन सा बीमारी मुर्गी पालन में लागू होकर तो उपचार कैसे करे चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि कौन से किस्म के
3: साथ में पूनम केरकेट्टा। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बाद झारखंड के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप वर्मा को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डॉ. वर्मा को बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि वे संगठन के विश्वास को मजबूत करेंगे और भाजपा की राष्ट्र सेवा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र 23 दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद रांची आने की बजाय सिर्फ पत्र लिखने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस अपनी सरकार से TDPL की परीक्षाएं रद्द कराए और CBI जांच सुनिश्चित करे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने JPSC JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा छात्रों की मांगों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। रांची में आज सतायु संघ और महिला सहभागिता पुस्तक की परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया गया है, उसे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। लातेहार में उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विभागों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। और रामगढ़ स्थित बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड के मरार परिसर में आज से 5 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता में कंपनी के विभिन्न विभागों की कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही सभी बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, स्टार्टअप की दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मजबूत बिजनेस प्लान के साथ साथ सही नेटवर्किंग, डिजिटल कौशल और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। फाल्गुनी नायर और विनीता सिंह जैसी महिला उद्यमियों ने साबित किया है कि सही सोच और जिद से मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं सही कौशल और मजबूत आइडिया हम कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तो हमें समस्या की पहचान करनी होगी, अपने आसपास ऐसी समस्याओं को ढूंढना होगा जिनका समाधान स्टार्टअप बन सके। दूसरा है डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया का उपयोग करना सीखना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों और महिला केंद्रित कार्यशालाओं से जुड़कर बिजनेस की बारीकियों को भी समझना चाहिए। फंडिंग और सरकारी योजनाएं, महिलाओं के लिए चलाई जा रही विशेष योजनाओं और लोन का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे इंक्यूबेटर्स जो महिला फाउंडर्स को फ्री मेंटरशिप और शुरुआती फंडिंग देते हैं।

उन निवेशकों और फंड हाउस की तलाश करना चाहिए जो विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में निवेश करते हैं। अगला है नेटवर्किंग और मेंटरशिप। बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और महिला उद्यमियों के समूहों का हिस्सा बनना चाहिए। अनुभवी बिजनेस लीडर या मेंटर से सलाह लेना चाहिए ताकि शुरुआती गलतियों से बचा जा सके। आत्मविश्वास रखना चाहिए, ना सुनने से घबराना नहीं चाहिए, चुनौतियों का डटकर सामना करने और अपने विजन पर अडक रहना चाहिए। बहनों, बातें तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, उम्मीद है आपको ये प्यारा सा गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महिलाओं के लिए स्टार्टअप के बेहतरीन विकल्पों में क्या क्या शामिल है। तो बहनों, इन विकल्पों में हैं ऑनलाइन फैशन बुटीक, क्लाउड किचन या होम कैटरिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और हस्तशिल्प। ये विकल्प जो है वो कम लागत में ही शुरू किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का या ई कॉमर्स के जरिए खुद के डिजाइन किए कपड़े और एसेसरीज बेच सकते हैं। मेकअप और हेयर केयर की विशेषज्ञ महिलाएं इसे बेहतर ढंग से चला सकती हैं। आयुर्वेदिक और नेचुरल स्किन या हेयर केयर उत्पाद बनाकर ऑनलाइन बेच सकती हैं। साथ ही घर से टिफिन सर्विस या ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिए होममेड फूड सप्लाई भी कर सकती हैं। केक, कुकीज और बेकरी आइटम बनाकर ऑर्डर पर भी बेच सकती हैं। डिजिटल और स्किल बेस्ड काम, इन कामों में शामिल है ऑनलाइन ट्यूशन, जैसे घर बैठे आप डिजिटल माध्यम से बच्चों को शिक्षा और मार्गदर्शन दे सकती हैं। साथ ही सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकती हैं। सजावट का सामान या आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी तैयार कर सकती हैं। इस तरह से महिलाएं अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकती हैं और इन सभी विकल्पों को अपनाकर सक्सेस भी हासिल कर सकती हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों, इस जरूरी संदेश के बाद आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। ग्रुप फॉस्टर केयर के बारे में जानकारी। भेंट वार्ताकार हैं कुसुमा गुप्ता और भेंट वार्ता भेंट करता हैं अंजलि सिन्हा।
5: आज हम बात कर रहे हैं कुसुमा गुप्ता जी से, जो नूतन नगर हजारीबाग में रहती हैं। ये ग्रुप फोस्टर केयर चलाती हैं, जिसका भारत में पहला स्थान है, जिसमें कुछ अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल में देखभाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस सराहनीय काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।
6: धन्यवाद।
5: तो सबसे पहले आप बताइए कि ग्रुप फोस्टर केयर किसे कहते हैं?
6: ग्रुप फोस्टर केयर सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य परिवार विहीन बच्चों को एक स्नेहपूर्ण पारिवारिक माहौल दिया जा सके, जिससे वे अपने जीवन में सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों को समझते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और एक सामान्य जीवन व्यतीत करें।
5: अच्छा, तो अभी आपके पास कितने बच्चे हैं?
6: अभी हमारे पास 9 बच्चे हैं, लेकिन झारखंड पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश 2018 के तहत एक ग्रुप फोस्टर केयर में 8 बच्चे रखने का प्रावधान है, किंतु विशेष परिस्थिति में हम 10 बच्चे रख सकते हैं, बायोलॉजिकल जो चाइल्ड है उनको मिलाकर।
5: अच्छा, तो इस काम को करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली वो बताइए।
6: फोस्टर केयर चलाने का कार्य मेरे अकेले का नहीं है, इसमें मैं और मेरे पति, हम दोनों मिलकर इसका संचालन करते हैं, और इसमें मेरे बच्चों का भी पूरा सहयोग है। मेरा पूरा परिवार इस कार्य में मेरा सहयोग करता है, इसलिए हम कह सकते हैं हम दोनों ही एक दूसरे की प्रेरणा है। जब कभी मैं थकती हूँ तो वो मेरा हौसला और भी बढ़ा देते हैं, और हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर अपने कार्य को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ईश्वर भी सदा हमारे साथ रहते हैं।
5: बिल्कुल, आप लोग आपस में मिलजुल कर काम करती हैं तो कोई भी काम जो है वो आसान हो जाता है। और आप बच्चों का देखभाल कैसे करती हैं?
6: मैं बच्चों का देखभाल वैसे ही करती हूँ जैसी एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी बातें बताए, जिससे वो एक समाज के एक बेहतर नागरिक बन सके और एक अच्छा कार्य कर सके, आगे बढ़कर समाज में अपना सहयोग दे सके।
5: बिल्कुल। और बच्चों की देखभाल के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं?
6: पैसा तो बहुत ही जरूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए, और हमने अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य में समर्पित कर दिया। हमारा जो कुछ भी है वो बच्चों के लिए ही है। बच्चों को शुद्ध भोजन मिले इसके लिए हमने ऑर्गेनिक खेती की भी व्यवस्था कर रखी है, कुछ फल के पेड़ भी लगाए हैं ताकि बच्चों को फल मिल सके, और शुद्ध दूध के लिए हमने गौ माता को अपने घर में रखा है, और जिससे बच्चे को दूध बहुत ही आवश्यक है, तो उसका बहुत बड़ा जरूरत हमारा घर में ही पूरा हो जाता है।
5: अच्छा, और ऐसे पढ़ाई के लिए आप क्या करते हैं?
6: पढ़ाई के लिए हमने उसका उन बच्चों का नामांकन करवाया है स्कूल में, और भी बेहतर उनका हो सके, उनका तैयारी सब्जेक्ट का, इसके लिए हमने होम ट्यूशन की भी व्यवस्था की हुई है।
5: अच्छा, और जैसे इस तरह का ग्रुप फोस्टर केयर आप चला रही हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिलती है?
6: सरकार की तरफ से प्रावधान तो है, प्रति बच्चे 2,000 रुपया देने का प्रावधान है, किंतु चूंकि हमने ये कार्य स्वप्रेरणा से किया है और ये हमारी खुद की इच्छा है कि हम करें, तो इसलिए हमने आज तक किसी से भी आर्थिक मदद नहीं ली है और हमारी यह कोशिश बनी रहती है कि हम अपनी व्यवस्था को ही और भी मजबूत करें जिससे हमें किसी से कुछ मांगना न पड़े।
5: बिल्कुल,
6: यही हमारी कोशिश रहती है।
5: तो कुष्मा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों को जब आप अपने पास लाई थी उस समय और अभी में क्या अंतर पाती हैं?
6: बहुत अंतर पाते हैं। जब हम बच्चों को लेकर आए थे यहाँ, उस समय बच्चे अशिक्षित थे, कुपोषित थे और बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए से थे। किंतु आज आप देखिएगा उन बच्चों को, वो पूरी तरह से बदल गए हैं। एक तो स्वास्थ्य में उनका बहुत सुधार हो गया, पूरी तरह से अब वो मेडिकली फिट भी हैं, स्वस्थ भी हैं। और दूसरा, जो शिक्षा हम लोग स्कूली शिक्षा और होम ट्यूशन के द्वारा उनका एक बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। आज बच्चे खुद से सब चीज लिखना पढ़ना सब जानते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें आत्मविश्वास भर गया है। जब हम लोग लेकर आए थे वो बच्चे हमसे नजर नहीं मिलाते थे, किंतु आज वो हमसे नजरें मिलाते हैं और बिना किसी संकोच के हमसे अपनी सारी इच्छाएं, सारी बातें शेयर करते हैं। दिन भर वो मम्मी पापा कहते रहते हैं और अपनी सारी स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, सारी बातें हमसे शेयर करते हैं और उनकी आंखों में चमक देख कर भी हमारा जो आत्मबल है और बढ़ जाता है और हमें लगता है कि नहीं, हमने बेहतर काम किया है और इससे बेहतर काम करना है हमें।
5: बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर ही रही हैं। फिर आगे आप इस क्षेत्र में और क्या करना चाहती हैं?
6: आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि और अधिक बच्चों को शिक्षा दे सके, उनको और अधिक बच्चों की सेवा कर सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके और जो भी बच्चे हमारे पास आए उनकी इच्छा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उनको डेवलप किया जा सके, उनको मार्ग दिखाकर उनको एक समाज का मुख्य अंग बना सके।
5: तो कुष्मा जी, आप अपने काम में सफलता पाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद।
6: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहनों, अभी आपने सुना भेंट वार्ता ग्रुप फोस्टर केयर के बारे में जानकारी। भेंट वार्ताकार थी कुष्मा गुप्ता और भेंटकर्ता थी अंजलि सिन्हा। तो चलिए हम अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। बहनों, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म पर पाई जाने वाली नकारात्मक सोच, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों, बालिकाओं की लिंगानुपात में कमी, बालिकाओं की शिक्षा की कमजोर स्थिति को दूर करने के लिए संपूर्ण झारखंड राज्य में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत, उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम करना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता, किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। इस योजना के तहत 8 से 12 तक की छात्राओं और 18 से 19 वर्ष की युवतियों के लिए कई आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। जैसे कक्षा 8 और 9 के बच्चों के लिए रुपये 2,500 प्रति वर्ष, कक्षा 10, 11 और 12 के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष और आयु 18 से 19 वर्ष के लिए ₹20,000 एक मुश्त राशि उच्च शिक्षा या विवाह के लिए। बहनों, कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर को फिल्म दुश्मन में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अजब प्रेम की गजब कहानी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अलीशा चिन्नॉय की आवाज में।

सुनैना फिल्म का गीत अभी आपने सुना हेमलता की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले?
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और?
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
8: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
10: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
11: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
10: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
13: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट सहयोगियों की बैठक। गतिरोध को समाप्त करने के लिए लिया जा सकता है नीतिगत निर्णय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, छात्र आंदोलन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए एमएमडीआर विधेयक का विरोध कर रही है राज्य सरकार, कृषि मंत्री का पलटवार। भाजपा के राष्ट्रीय

0: अध्यक्ष नितिन नबीन ने की नई केंद्रीय टीम की घोषणा। झारखंड से राज्यसभा सदस्य डॉ. प्रदीप वर्मा बने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 19 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का पूर्वानुमान। चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी। और पुणे में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जिरेन सोय चुनी गई प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कैबिनेट सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस नए घटनाक्रम के बीच समझा जा रहा है कि आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की वार्ता अब इस बैठक के बाद ही संभव हो सकेगी। छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर जारी पल पल के घटनाक्रम के बीच बुलाई गई इस आपात बैठक पर राज्य भर के अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज कोई बड़ा नीतिगत निर्णय ले सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आंदोलनरत छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का आग्रह किया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने स्पष्ट किया कि पार्टी छात्रों की जायज मांगों के साथ है।
1: कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा। हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के छात्र 23 दिनों से सड़कों पर है, लेकिन राहुल गांधी खुद रांची आने की बजाय सिर्फ पत्र लिखने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस अपनी सरकार से TDPL की परीक्षाएं रद्द कराए और CBI जांच सुनिश्चित करे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MMDR संशोधन विधेयक 2026 पर राज्य सरकार को घेरा है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके।
2: यहाँ सरकार रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, प्रीमियम प्राप्त कर सकती है, लेकिन उस शाम को तो सरकार 6.5 वर्षों से कुछ किया ही प्राप्त कर रही है। तो इसीलिए जनता अच्छी तरह से इसको समझ रहे हेमंत सोरेन सरकार कि इन्होंने अचानक इस पर इतने लंबे लंबे क्यों बात कर रहे हैं कि बच्चों के आंदोलन डायल्यूट करने की धंसा को पोषण।
0: राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बाबूलाल मरांडी के संवाददाता सम्मेलन पर पलटवार करते हुए MMDR संशोधन विधेयक को राज्य के लिए नुकसानदेह बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक झारखंड के खनिज अधिकारों और राजस्व को प्रभावित करेगा।
3: यहाँ के मूल निवासी हम लोग, तो हम लोगों को क्यों प्रमाणित करना पड़ रहा है कि इस देश के नागरिक हैं हम लोग? तो ये उनका बहुत एक जायज सवाल है, विचार है, जिसके कारण वो लोग गन्ना प्रपत्र को साइन नहीं कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को विशेष रूप से ऐसे आदिवासी समाज को वोटर लिस्ट में लाने के लिए एक अलग से अभियान चलाना चाहिए।
0: रांची में आज शतायु संघ और महिला सहभागिता पुस्तक की परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया गया है, उसे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।
4: विज्ञान से खेल तक, प्रशासन से उद्योग तथा शिक्षा से सामाजिक सेवा तक महिलाओं की उपलब्धि देश के लिए गौरव का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से इसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को देश की नीतियां और विकास को दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण बनाया है।
0: इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पुस्तक की लेखिका और संपादिका डॉ. शोभा विजेंद्र और राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई केंद्रीय टीम की घोषणा की। इसमें वसुंधरा राजे और राम माधव सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बीएल संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े सहित 8 नेता राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। युवा मोर्चा की कमान डॉ हेमांग जोशी को मिली है। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ प्रदीप वर्मा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा आज घोषित की गई नई केंद्रीय टीम में डॉ वर्मा को ये बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। चतरा पुलिस को उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी अनिमेश नथानी ने बताया कि पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू को गिरफ्तार कर लिया है।
5: टीम का गठन किया गया जिन्होंने सफलतापूर्वक अभियान चलाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2024 में जोरी थाना अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था जिसमें अफीम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जब पुलिस दल वापस आ रहा था तब इनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उस संबंध में ये वॉन्टेड भी चल रहा था।
0: देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 में आज तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के महासंयोग पर श्रद्धालुओं का ऐतिहासिक सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे संवाददाता ने जिला प्रशासन के हवाले से बताया है कि शाम 7 बजे तक 3.25 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ का पवित्र जलाभिषेक सम्पन्न कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई हिस्सों में आज से लेकर 19 अगस्त तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, रांची तथा सरायकेला खरसावां सहित विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं कल के लिए चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त पलामू प्रमंडल में भी कल भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में चल रही 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुकाबले में पंजाब ने शुरुआती बढ़त बनाई लेकिन झारखंड की कप्तान रजनी करकेट्टा, पुष्पा डांग और सलोमी नाग के शानदार गोलों की बदौलत टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। झारखंड की डिफेंडर जिरेन सोय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट सहयोगियों की बैठक। गतिरोध को समाप्त करने के लिए लिया जा सकता है नीतिगत निर्णय। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा छात्र आंदोलन से जनता का ध्यान भटकाने के लिए MMDR विधेयक का विरोध कर रही है राज्य सरकार, कृषि मंत्री का पलटवार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की नई केंद्रीय टीम की घोषणा। झारखंड से राज्यसभा सदस्य डॉ प्रदीप वर्मा बने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री। राज्य के कई हिस्सों में 19 अगस्त तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का पूर्वानुमान। चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी। और पुणे में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जिरेन सोय चुनी गई प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: ओह लवली, वेल डन।
6: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
7: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में।

0: चुकाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: सिमडेगा जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में आन बान और शान के साथ राष्ट्रध्वज फहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों में भी सम्मान के साथ तिरंगा फहराया। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित मुख्य ध्वजारोहण समारोह में उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि
2: ये अपने वादे को निभाया था और हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिया। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करते समय हमें उस वादे को फिर से याद करना है, क्योंकि किया वह हमसे यह भी पूछता है कि इस तिरंगे को हाथों में लिए अपनी जान अपने सपने जिस भारत का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए हमने क्या किया।
1: राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सिमडेगा जिले में भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन कर सरकार से इन परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच करने की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि
3: जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले कई दिनों से हजारों छात्र और युवा आंदोलनरत है। यह केवल एक परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य और उनके साथ जुड़े भरोसे का सवाल है। ऐसे में यदि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह युवाओं की शंकाओं का निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान करें। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में लगाए जा रहे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, यही हमारी मांग है।
1: कभी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में शामिल सिमडेगा जिले में अब उग्रवाद समाप्त होने से विकास कार्यों में तेजी आई है और ग्रामीण काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बानो प्रखंड निवासी गौरव गौतम सिंह ने कहा कि
4: पहले इस इलाके में भाकपा माओवादी के साथ यहां पर पीलेफाई उग्रवादियों का दस्ता काफी ज्यादा सक्रिय रहा करता था। उस वक्त इस इलाके में डर का माहौल था, लोग घरों में दुबके रहते थे क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन उग्रवादियों से हमें लगता था। लेकिन वर्तमान समय में हम खुले में सांस ले सकते हैं क्योंकि पहले रात में भी चलना काफी मुश्किल था, घरों पे सोना भी मुश्किल था। इस इलाके में बहुत सारी हत्याएं हुई लेकिन वर्तमान में जो उग्रवादियों के द्वारा हत्याएं की जाती थी वो पूरी तरह से रुक गई है। साथ में विकास की योजनाएं भी जो है वर्तमान समय में काफी तेजी से धरातल पर देखने को मिल रहा है। जिस वक्त इस इलाके में उग्रवादी रहा करते थे लेवी के कारण इन इलाकों में सड़कें नहीं बन पाती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो स्थिति आज नहीं है। आज सभी लोग चैन की जिंदगी अपने घरों में जी रहे हैं।
1: सावन के पवित्र माह में सिमडेगा के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान भोलेनाथ का जल और दूध से अभिषेक कर उनसे सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। मनोज कुमार सिन्हा मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
0: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता के रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कर।

विषय कार्यक्रम आपकी योजना, संकलन एवं वाचन है प्रकाश कुमार राणा के, प्रस्तुतकर्ता है राजीव कुमार और संयोजक है विक्रम कुमार रंजन।

0: श्रोताओं, क्या आप रोजगार की तलाश में हैं? और यदि आप में कार्य करने के लिए कौशल विकास, हुनर की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे युवाओं के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बैंकों की संयुक्त भागीदारी से हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। आज की इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हजारीबाग जिले की इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान यानी RCT की। यहाँ निशुल्क सहायता की जाती है आपको कुशल और निपुण बनाने में, बैंकों से ऋण लेने में, एक सफल उद्यमी बनाने में, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं RCT यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की विशेषताएं और कार्यविधि के बारे में। इसी संदर्भ में हमारे साथ हैं RCT हजारीबाग के वासुदेव कुमार जी, जो कि वरिष्ठ प्रशिक्षण समन्वयक हैं। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद
0: वासुदेव जी। हम आपके RCT सेंटर में हैं, तो आप बताएं कि RCT है क्या।
1: RCT बेसिकली ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार और बैंक की सहायता से हर एक जिले में, देश के हर एक जिले में चलाया जाता है। इसका विस्तार रूप है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और ये हजारीबाग में इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित है, और इसको इंडियन बैंक पूरा खर्च वहन करती है।
0: RCT यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की क्या क्या उद्देश्य या विशेषताएं हैं?
1: बेसिकली ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो लोग होते हैं उसको स्वरोजगार से जोड़ना।
0: अच्छा।
1: और उनको जोड़ के उसका रोजगार मुहैया कराना, बैंकों से ऋण मुहैया करवाना, ये इसका बेसिक उद्देश्य है।
0: ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे BPL परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, कौशल की कमी होती है, और रोजगार मिल भी जाती है तो बहुत कम दरों पे वे काम करते हैं। यदि हाथों में हुनर हो तो उन्हें अपना स्वरोजगार या तो कहीं काम करते तो उन्हें अधिक फायदा होगा या अधिक पैसे मिलेंगे, है ना, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि RCT की क्या क्या खूबियां हैं जो लोग आपसे जुड़ते हैं, युवा आपसे जुड़ते हैं।
1: RCT में जुड़ने का मुख्य उद्देश्य या फिर युवा जो आकर्षित होते हैं हमारी ओर, क्योंकि यहाँ पे RCT में बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: ये आवासीय है पूर्ण रूप से, यहाँ पे रह करके रहना खाना फ्री में है, ट्रेनिंग फ्री में, ट्रेनिंग का जो साजो सामान है वो फ्री में दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को निःशुल्क पोशाक दिया जाता है, छात्रावास में रहने की व्यवस्था दिया जाता है, और विभिन्न उद्यमी के गुण कौशल को उनको अर्जित करने का तरीका, क्या क्या कौशल है, आप भविष्य में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। उसके जो हमारे क्षेत्र में जो लोग कुशल प्रशिक्षक होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: योग्य प्रशिक्षक द्वारा दिया जाता है। हमारे यहाँ कम अवधि का प्रशिक्षण, और एक दिन में, एक दिवस में मिनिमम कम से कम 8 घंटा का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको। प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों को 2 वर्ष तक का बैक सपोर्ट करते हैं, पीछे से उसका सपोर्ट करते हैं कि क्या समस्या है, स्वरोजगार स्थापित करने में क्या समस्या आ रहे हैं हमें बताइए, हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाता है। वो सारा JSLPS की दीदी लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें लोगों को बैंक के बारे में, बैंकिंग के बारे में, बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं देती है, क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही है, उसके बारे में समूह में जाकर के वो लोगों को बताती है। हम यहाँ मास्टर प्रशिक्षक तैयार करते हैं, वो समूह में जाकर के वो लोगों को विस्तार से बताती है, और हम बैंक से कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में उन लोगों को बताया जाता है। कृत्रिम आभूषण बनाने का, हाथ में, कान में, नाक में, गला में, पैर में वो पहनते हैं, वो सब चीज का प्रशिक्षण दिया गया है। मुर्गी पालन का, गाय पालन का, बकरी पालन का, मतलब पशुपालन से, खेती बाड़ी से संबंधित अभी प्रशिक्षण। उसके बाद हमारे यहाँ महीना भर का भी प्रशिक्षण हो।
0: प्रशिक्षण लेने के लिए उन युवाओं को क्या करना हो, कैसे आपसे जुड़ेंगे?
1: हमसे जुड़ने के लिए सीधा RCT आ सकते हैं। यहाँ का पूरा पता है साकेतपुरी, जो नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप है। हम गांव-गांव में, पंचायत पंचायत में, ब्लॉक ब्लॉक में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। JSLPS का जो भी ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, आपका क्लस्टर ऑफिस है, वहां पे भी आप जाकर के JRP दीदी से संपर्क करके वो हमारा एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, उनसे बात करके हमारा फॉर्म ले सकते हैं, और ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है।
0: इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के नाम से ये संचालन हो रहा है अभी, तो उन युवाओं को क्या क्या दस्तावेजों के साथ आपके पास या आपके कार्यालय आना होगा?
1: मेरे पास प्रशिक्षण लेने के लिए जो मूलभूत दस्तावेज है, पहला आधार कार्ड उनका होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: उसमें उनका उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में अंकित होना चाहिए।
0: ठीक।
1: दूसरा है आपका बीपीएल नंबर का या बीपीएल जो आपको प्रमाणित करता है कि आप बीपीएल परिवार से। तीसरा चीज है आपका शैक्षणिक योग्यता कितना है। चौथा चीज है 4 पासपोर्ट आकार का फोटो। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए, अलग अलग ट्रेड के लिए आपको अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की जरूरत पड़ता है। जैसे 30 दिन वाला प्रोग्राम के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। बाकी कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित आपको कम से कम पढ़ना लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और आप एग्जाम में पास हो जाएं। एग्जाम परीक्षा जो पास करते हैं उन्हीं को प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ से सर हम आपको बताते हैं, 2 प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक तो होता है कि जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम का प्रतिभागी हुए, प्रतिभागी प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरा होता है कि जो परीक्षा में पास करते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेसर द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र आता है। वो हमें, हम उसको प्रिंट नहीं करते हैं, वो वहीं से आता है और उनको हम देते हैं,
0: हाँ,
1: परीक्षा पास करने के उपरांत।
0: इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है उन प्रशिक्षु को, वे अभ्यर्थी जो यहाँ सीखने आते हैं, युवा या महिलाएं, तो सीखने के बाद मन में इच्छा होती है कि क्यों ना अपना स्वरोजगार करें, क्योंकि सीखने का मतलब यही है, या तो कहीं रोजगार करें या तो अपना खुद का स्वरोजगार करें। तो क्या इंडियन बैंक जो है किस तरह से इनकी मदद करती है?
1: इंडियन बैंक का मुख्य उद्देश्य सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्वरोजगार।
0: अच्छा।
1: ये स्वरोजगार ही करना है, इसमें आपको कहीं प्लेसमेंट या नौकरी के लिए आपको ये प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो ये पहला समझना है कि हमको प्रशिक्षण लिए है वो स्वरोजगार के लिए, इसे या तो खुद का रोजगार करना है। अगर आपके पास पूंजी है, खुद का पूंजी है, तो जिस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण लिए हैं उसी चीज को आप स्वरोजगार के रूप में अपना अपने घर जाकर के, घर बैठे आपको करना है, कहीं बाहर में नौकरी के लिए नहीं भेजना। दूसरा चीज, अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो हम उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आपके पास पूंजी अपना है या नहीं है। अगर पूंजी नहीं है तो आप हमारे यहाँ आवेदन दे दीजिए ऋण के लिए, आपको कितना ऋण की आवश्यकता है वो भी आप दर्शा दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चिट्ठी बनाएंगे आरसीटी का, अपना जो लेटर हेड होता है हमारा उसमें, और हम थ्रू हजारीबाग के एलडीएम के थ्रू उसके सेवा क्षेत्र के बैंक में उस एप्लीकेशन को, आवेदन को भेज देते हैं कि ये हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, इनको ऋण की आवश्यकता है, ये हमें बताएं, आप इन्हें इसको ऋण मुहैया कराएं ताकि ये अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके।
0: हर जिले में चल रहा है, लेकिन उनके प्रायोजक या तो उनके देखरेख करने वाले बैंक अलग अलग होते हैं,
1: मॉनिटरिंग बैंक,
0: हाँ, मॉनिटरिंग बैंक जो होते हैं सो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ फिलहाल हजारीबाग जिले में, और ये जो है नीलांबर पीताम्बर चौक के समीप जो है सदानंद मार्ग में साकेतपुरी में जो चल रहा है, वहाँ इंडियन बैंक द्वारा देखरेख में ये चल रहा है। युवाओं को ये यहाँ से प्रशिक्षण दिए, क्या अनुभव करते हैं आप, उनके जीवन में क्या बदलाव होता है?
1: हम यहाँ 2013 से पोस्टेड हैं और करीब यहाँ से प्रत्येक वर्ष 700 से 800 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेते हैं। सर जब हम फील्ड में जाते हैं, मैंने पहले बताया कि 2 साल तक इसको बैक सपोर्ट करते हैं हम लोग।
0: अच्छा।
1: और फील्ड में जाकर के फॉलो अप करते हैं, देखते हैं जाकर के क्या कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं सर वो लोग करता है तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलता है कि हमारा प्रशिक्षणार्थी, हम वहाँ जाते हैं तो हमें बुलाते हैं, बैठाते हैं, बढ़िया से बताते हैं कि सर आपके प्रशिक्षण वहाँ से लिए और हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें सर बहुत खुशी होती है। और लोग रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं, कि हमें क्या करना है कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ने का काम करना है।
0: जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद हाथ में तो हुनर रहता नहीं था, वे पलायन कर जाते थे दूसरे राज्यों में, लेकिन कई कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से, खासकर आरसीटी जो है, उन युवाओं को स्वरोजगार घर पे ही देता है। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: नौजवान बेरोजगार युवक जो भी अपने घर में पढ़ लिख करके बैठे हुए बेरोजगार हैं, उनसे हम यही चाहेंगे कि अपने इच्छा के अनुसार किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण लेकर के आप अपना स्वरोजगार स्थापित करें। युवाओं से खास करके जो 18 से 45 साल के बीच में घर में बैठे हैं, वो प्रशिक्षण करके कुछ ना कुछ करें और सरकार का सहयोग करें।
0: तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: आरसीटी यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि हर जिले में संचालित है, इसकी स्थापना के पीछे ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल ग्रामीण, गरीब परिवारों में बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जुड़ना है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर

0: अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। तो सुनते हैं इस योजना के लाभुकों से उनकी राय और जानते हैं उनकी आत्मनिर्भरता की कड़ी को।
1: मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी पासवान है। हम आरसीटी से सिलाई के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग वहाँ से सारा कुछ सीखे हैं। पेटीकोट हो गया, ब्लाउज हो गया, फ्रॉक हो गया, नाइटी हो गया, बेबी फ्रॉक हो गया। उसके बाद हम लोग वहीं का एप्रन सिलाई कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म है वहाँ का।
0: क्या क्या सुविधाएं दी गई थी उस समय जिसमें आप सीख रही थी?
1: वहाँ से सारा सुविधा हम लोग को मिला था, जैसा कि कपड़ा वगैरह मिला था, सारा चीज, सिलाई का मशीन भी वहीं का था, खाना वगैरह भी मिलता था, शाम को चाय बिस्किट सारे कुछ, मैंने सुविधा में ऐसा सब कुछ मिला वहाँ से हम लोगों को।
0: सीख जाने के बाद क्या किया आपने? देख रहे हैं कि आपके पास कई सिलाई मशीन है, तो यहाँ तक का सफर कैसे तय किए आप?
1: हम लोग कुछ लोन भी लिए और फिर अपने से भी कुछ अपना अपना सब पूंजी लगाए और फिर हम लोग यहीं पे, मैंने सर ही बताए कि आप लोग वहाँ का यूनिफॉर्म से लिए, तो उसी के माध्यम से हम लोग अभी सिलाई कर रहे हैं।
0: तो कहाँ कहाँ से काम आता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं जो हैं आपस में ग्रुप बना के बैठी हैं।
1: सर जैसे तो अभी आरसीटी का हम लोग एप्रन सी रहे हैं। अच्छा। फिर अगर हम लोग को कहीं से ब्लाउज का मिल गया ऑर्डर तो वो भी कर लेते हैं, पेटीकोट का मिल गया वो कर लेते हैं, कोई ऑर्डर दे दिया कोई अगल बगल से भी दे दिया वो लोग का भी ले लेते हैं, नाइटी वगैरह हो गया या फिर नाइट ड्रेस हो गया, मैंने जितना सिलाई वाला है हम लोग सब ऑर्डर ले लेते हैं और फिर हम लोग सब मिल के सीते हैं।
0: एक और दीदी हमारे साथ है, तो क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम किरण देवी है। यहाँ आके एप्रन सिलते आरसीटी का।
0: आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
2: बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोग समूह में जुड़े, समूह के द्वारा जेआरपी दीदी के द्वारा से फिर आरसीटी का पता लगा, वहाँ से फिर हम लोग सारा सुविधा मिला, सिलाई के दौरान कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ और न कमी हुआ। उसके बाद जब हम लोग का ट्रेनिंग खत्म हो गया तो फिर हम लोग ग्रुपिंग किए कि हम लोग को अब एप्रन सिलना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग 10 महिला ग्रुप बनाए, फिर हम लोग को सैंपल मांगा गया, सर बोले कि नहीं सैंपल देना है, तो वहाँ के लिए फिर आप 2 एप्रन सिल के दिखाए, सर बोले अच्छा है। उसके बाद फिर से ऑर्डर आया 50 का, उसके बाद सब सिल के पहुँचाए आरसीटी, वहाँ से फिर हम लोग को पैसा मिला और जो पैसा आया जो हम लोग को कमी था उस पैसा को हम लोग उस जगह पे यूज किए, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हम भी अपने पैर पर खड़ा होके कुछ आगे बढ़े।
0: एक और दीदी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम कुलसुम खातून है।
0: आरसीटी यानी कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में कैसे पहुंची आप लोग?
3: हम लोग जेएसएलपीएसए के द्वारा ग्रुप बनाए थे। अच्छा। तो वहीं से हम लोग पहुंचे, जेआरपी दीदी हम लोग को बताई तो वहीं हम लोग पहुंचे। उसके बाद फिर 1 महीना का ट्रेनिंग हम लोग लिए, उसके बाद अपना जीविका को बढ़ाने के लिए हम लोग को जो सुविधा वहां से मिला उसी से हम लोग आगे बढ़े।
4: मेरा नाम मंजू देवी हुआ। काम मिलता है हम लोग को, थोड़ा अच्छा भी लगता है करने में कि और हम लोग को काम मिला तो हम लोग काम करके थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, अपना आर्थिक सुविधा को मतलब आर्थिक स्थिति को सुधार में लाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जैसे घर से हम लोग बाहर निकलते हम लोग बहुत खुशी होती है कि चलो हम लोग अपने साथ जा रहे हैं, सारे ग्रुपिंग मिल करके हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग को खुशी बहुत ज्यादा होती है कि हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और अपना पैर पे खड़े हो सकते हैं।
0: पूर्णिमा पासवान जी से बात करते हैं कि किस तरह से ये जो है महिलाओं की स्थिति को पहले जो देखे थे और अभी जो देखते हैं, क्या आत्मनिर्भरता आती है उनके चेहरे में, उनकी आंखों में?
1: पहले से तो चेंजिंग है, पहले इन लोग के पास भाड़ा तक नहीं रहता था, अब तो खुद से अपना पैसा लगा के ये लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले किसी मोहताज रहना पड़ता था, जैसे हो गया ससुर से मांग लिए या हस्बैंड से मांग लिए, लेकिन अब इन लोग को मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये लोग के पास खुद आ गया है इतना कि ये लोग अपना आना जाने वाला ये कर सकते हैं। ये लोग सब है कि दूर दूर से है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह के सब है। अच्छा। कोई ओरिया से आती है, कोई बहरी से आती है, कोई लालपुर चौक से आती है, एक सिंदूर से है, एक सिरसी से है और एक हुड़हुड़ू से है। हम ही लोग सब बैठ के एक जगह एक दिन मीटिंग रखे और फिर हम लोग बोले कि नहीं हम लोग को कुछ करना चाहिए, ऐसे सिलाई सीख के ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, इस सोच के हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग जब सिलाई सीखे हैं तो उसको कुछ हम लोग करके दिखाएंगे, इस सोच के हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सर।
0: इस तरह के कई कार्यक्रम निशुल्क इस आरसीटी संस्थान के माध्यम से हर जिले में चलाया जा रहा है, तो उम्मीद है आप इस योजना का लाभ जरूर लेंगे।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी योजना, संकलन एवं वाचन थे प्रकाश कुमार राणा के, प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम।

दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

कार्यक्रम का अगला नगमा आइए सुनते हैं हेमलता और रविंद्र जैन की आवाज में। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखे से।

श्रोताओं, अपनी ट्यून क्या है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम का अगला नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है काला पत्थर।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद इरफान पलक मुछल और दर्शन रावल की आवाज में फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए फरमाइशी गीतों की इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

आवाज़ी कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म का नाम इम्तिहान और इस गीत को सुनना चाहा था एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एसआर कांगड़ा। इसी गीत को सुनना चाहा था गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिर्क, जयतेक बिर्क और मिका बिर्क। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बरकाकाना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, सुनीता, दीपा, अनवी और सुजल। अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है क्रिएचर और इस गीत को सुनना चाहे जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से आप हैं मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा, यास्मीन फातिमा और शहनाज फातिमा। चेपागला बड़का गांव से हैं श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सभ्या ठाकुर, तिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जीतेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका। महादेवघाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं क्रिएचर फिल्म का ये गीत।

दावते इश्क, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आदर्श नगर मलोड से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, शोक शर्मा और साइना शर्मा। कृष्णापुरी मटवारी से हैं आकाशी, अक्षत, कान्हा, आराध्या, आरो, दीक्षा, आकृति, रिद्धि, सिद्धि, सुहानी, संध्या, राम और इनका पूरा परिवार। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से हैं महावीर लाल चौरसिया, कुंती देवी चौरसिया, आकाश चौरसिया, संगीता देवी, पूजा देवी, जागृति, कृष्णकांत और अस्मित राज।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत है, मेन रोड बड़का गांव से आप हैं, दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके ढेर सारे साथीगण। पंचबंदी रोड से हैं कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। डम्बड़ी हरली बड़का गांव से हैं उमेश चंद पांडे, शंभु चंद पांडे, अनिल चंद पांडे, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, टोकू, अपूर्वा और समस्त पांडे परिवार। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म डॉली की डोली का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है पहली मोहब्बत और इस गीत को सुनना चाहा है हजारीबाग पतरातु से आप हैं बेसिल खलको मधु रितु रचना मीतू श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा सोरेन एवं समस्त परिवार। कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजाल दास शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से हैं महबूब आलम शबनम नूरी मकसूद आलम पाकिजा बेगम महमूद आलम शहनाज नूरी महफूज आलम और शमशाद बेगम।

अगला फरमाइश शिखत है, मेन रोड बनासो दरियापुर जिला अमरावती से आप हैं यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान। नया टोला भीखनपुर भागलपुर से हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। पोचरा सामुदायिक भवन से हैं महेश राम, सरिता देवी, फुलवासी देवी, कुमारी वर्षा, पिंटू कुमार और समस्त परिवार। बड़ा बम्बो गांव सुपाई साई से हैं देवेन ताती, राकेश ताती, प्रकाश, रेशमा कुमारी, निशा, प्रीति और देवेन। इन सब ने सुनना चाहा है जन्नत फिल्म का गीत, तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म कोई मेरे दिल में है का ये गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है दौलतबाद मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तुबा खान, रऊब और साइद। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से हैं अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, रूबीना परवीन, अरहान, हमजा, तैमूर, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज और मुजम्मिल।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। खतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है, जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
3: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े

0: नियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वर्किंग एम्प्लॉय उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70 सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब

0: आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms, directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul Test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
4: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month.

0: संस्कृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार में आज हैं हिंदी फिल्म जगत के मनोरंजन का हंसता हंसाता गुदगुदाता दर्शकों की जिंदगी में मुस्कुराहट बिखेरने वाला फिल्मकार डेविड धवन यानी डबल डी। डेविड मतलब सेल्यूलाइट का धमाल।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली।

0: वाले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता।
1: आंखें वो फिल्म थी जिसकी सफलता के साथ डेविड धवन ने एक फिल्मकार के रूप में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर एक निर्देशक स्वर्ग, शोला और शबनम, साजन चले ससुराल, जुड़वा, जुड़वा दो, बड़े मियां छोटे मियां, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों से डेविड धवन मनोरंजन की बहार लेकर आए।

1993 की एक्शन थ्रिलर आंखें और 1999 की कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 ने इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए नामांकन दिलवाया।

डेविड धवन का मूल नाम राजेंद्र धवन है। राजेंद्र धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनके पिता बैंक में थे तो उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया और वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई के पश्चात अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए डेविड धवन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में एक्टिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। FTII की बातें अभी बाकी है, आइए पहले आगे बढ़ें बोल राजा बोल के इस गीत को साथ लेकर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और जूही चावला।

जी हाँ, बात कर रहे हैं FTII की। यहाँ राजेंद्र धवन ने एडमिशन तो एक्टिंग के कोर्स में लिया था, पर कलाकार सतीश शाह और सुरेश ओबराय से वहां मिलकर, जो वहां के विद्यार्थी थे, इन्हें लगा कि एक्टिंग इनके बस की बात नहीं है, तो इन्होंने विकल्प के रूप में एडिटिंग को चुना और गोल्ड मेडल के साथ अपनी परीक्षा पास की। वैसे तो मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी आपके पसंदीदा निर्देशक थे, पर ऋत्विक घटक की बांग्ला फिल्म मेघा ढाका तारा देखकर आपने एक निर्देशक बनने का सोचा, और जो सोचा वही किया, और कमाल का किया।

डेविड धवन के नाम को लेकर बड़ा ही रोचक और आत्मीय संबंध है। अगरतला में इनके पड़ोसी कैथोलिक परिवार ने इन्हें डेविड कहकर पुकारा, इस तरह से उन्हें पुकारा करते थे, और यही नाम इन्होंने अपने पहले नाम राजेंद्र की जगह चुना और FTII में इसी नाम से दाखिल हुए। वैसे ये जानना भी कुछ श्रोताओं के लिए सुखद होगा कि डेविड के बड़े भाई हैं मशहूर अभिनेता अनिल धवन। छोटे छोटे शहरों से हम तो झोला उठा के चले, डेविड की जीवन यात्रा से जुड़ता हुआ ये गीत है। ये अलग बात है कि चेतना और पिया का घर फेम हीरो अनिल धवन, इनके बड़े भाई, फिल्मों में उस वक्त सक्रिय थे, पर फिल्मों में काम मिलना तब भी उतना आसान नहीं था। मुंबई पहुंचे डेविड ने आरंभिक दौर में बॉम्बे टीवी के न्यूज सेक्शन में एडिटिंग से शुरुआत की। पहला एडिटिंग का ब्रेक सावन कुमार और पहलाज निहलानी ने इन्हें दिया। फिर राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी, महेश भट्ट की नाम और सारांश जैसी फिल्मों के सफल संपादन से आपने अपना नाम किया। राजेश खन्ना और संजय दत्त डेविड धवन की संपादन कला के मुरीद थे। डेविड धवन भी मानते हैं कि संजय दत्त ही थे जिनके कारण इन्हें बतौर निर्देशक पहला मौका मिला, और फिल्म थी शोला और

0: gori gori baki chori sharmili aur nakhre wali.
1: डेविड धवन का जिक्र हो और गोविंदा का नहीं, या फिर गोविंदा का जिक्र हो और डेविड धवन का नहीं, तो बात अधूरी लगती है। चलिए बात को पूरी कर लेते हैं। पहले कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने हिंदी फिल्म दर्शकों को अनेक हंसाती गुदगुदाती हास्य प्रधान फिल्में दी। 18 फिल्में इन्होंने साथ की। चलिए इनके साथ की गई फिल्मों के गीतों की एक मेडली सुन लेते हैं।

एक निर्देशक के लिए गोविंदा को फिल्म में लेना निश्चित रूप से सफलता का प्रतीक था। जहां तक डेविड धवन की बात है तो आपका मानना है कि गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो मामूली सीन को भी मनोरंजक बना देता है। और जहां तक गोविंदा के सेट पर देरी से पहुंचने की बात है तो निर्देशक का मानना है कि इससे फिल्म पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोविंदा एक तेज कलाकार है, 10 घंटे का काम 4 घंटे में बड़ी ही सफलता और कामयाबी के साथ कर लेते थे। डेविड धवन एक भावुक और आत्मीय इंसान है। 90 के दशक में जरूर काम की अधिकता ने इन्हें एक बैड टेम्पर का बना दिया था, पर आज अपनी 41 फिल्मों के बाद इनका मानना है कि वे अब काफी कूल हैं। अपनी पत्नी करुणा चोपड़ा धवन को आप अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक इमोशनल एंकर मानते हैं, जिन्होंने इनके परिवार को सहेजा, दुलारा, प्रोत्साहित किया। डेविड धवन के दो बेटे हैं, एक रोहित और दूसरे वरुण धवन।

एक कलाकार और निर्देशक का ये बाप बेटे का प्यारा रिश्ता है जो फिल्मों में भी साथ साथ देखने को मिलता है। वरुण धवन को आप एक नटखट बालक के रूप में पाते हैं, पर फिल्म के सेट पर जब डेविड धवन होते हैं तो वरुण सिर्फ एक निर्देशक का कलाकार होता है।

डेविड धवन ने सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरी दुनिया में मुस्कान की दौलत खूब लुटाई है। राजा बाबू, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हन हम ले जाएंगे, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, शादी नंबर वन जैसी खूब नंबर एक फिल्में बनाई है इन्होंने। दर्शकों ने भी इनकी फिल्मों पर प्यार लुटाया है।

0: तो ये था आज के फनकार, जो केंद्रित था निर्देशक डेविड धवन पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

नदिया के पार। श्रोताओं, आपने अभी सुना इस फिल्म का गीत हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है फकीरा।

श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। यशुदास और हेमलता की आवाज में। फिल्म का नाम है चित चोर।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के कुछ गीत। ये फिल्म 1974 में बनी और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार हैं। इस फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीना तमान और मौसमी चटर्जी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के गीत।

श्रोताओं, अपनी ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा

का नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।